0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल

0: सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

0: बिना ज्ञान दे आजादी हमेशा दुखदाई हुंदी है, ते बिना स्वतंत्रता ज्ञान हमेशा बेकार।
1: आओ सर्वण करते हैं भक्ति संगीत प्रोग्राम आराधना।

परमात्मा दा नाम ते आईए, मन च उस नूं वसाईए, उस सिमरन करिए जो हर पल दे विच है, हर जगह च है, हर मन हर रूह विच है, ते सवेर दे इना पलां नूं सार्थक कर लईए। भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों सरवण कर रहे हो।

0: संधु साहब जय हिंद जी।
1: जय हिंद जी। जय हिंद। रंगा सिंह जी सुनाओ की हाल चाल है।
0: हले चाले कृपा उस दाते दी के सब ते बनी रहे।
1: हाँ बिल्कुल जी, सारा ते जिहड़ी रब दी मेहर है ना वो बनी रहे,
0: बिल्कुल
1: तां कि जिहड़े साडे काम कार आ ना,
0: हाँ ये चलते रहे।
1: हाँ ठीक तरीके नाल अपना हिस्सा जिहदे च पाउंदे रहिए।
0: जी
1: ते खास करके देखो रंगा सिंह जी के आला दुआला जिदा कहने कि वह भी तंदुरुस्त हो, ते अपने आप नू भी तंदुरुस्त रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल जी। या फिर नू दूजे पास ही कह लो जे आप तंदुरुस्त ना इंसान ते फिर उहदे कम धंधे भी फिर चलते आ, नेपड़े चलते आ। ते नाल दे नाल जिहड़ी गल खेतीबाड़ी दी जे आपां करिए ना, ते देखो बहुत सारियां फसलां हुण संधु साहब इहो जिहियां आ गईयां जिहड़ियां गर्मी सर्दी मौसम विच आपां इहनां नू बीज सकते आ।
1: और सारा साल ही वरतते हैं।
0: आह
1: खुंबा लै लो
0: है
1: जी, कोई ऐसा अपने त्यौहार हो घर दे विच देख लो
0: जी,
1: ते खुराकी पक्षों देखो ते हर मौसम दे विच इहनूं आपां पैदा कर सकते हैं जी।
0: बिल्कुल जी।
1: ते सिर्फ है कि कुछ थोड़ी जिहियां गल्लां ध्यान रखनियां पैंदियां रंगा सिंह जी
0: जी,
1: कि पूरे तरीके नाल काम करो तां पहलां इस काम की सिखलाई लै लो, एवें नहीं भी काम देखा दिखाई शुरू कर लो
0: ना।
1: क्योंकि थोड़ा जा तकनीकी काम है।
0: देखो ज्ञान जिहड़ा आ ना वह माहरां कोलों ही मिल सकता, ते माहर ट्रेनिंग कैंप भी लाउंदे आ, ते सिखलाई कैंप जिहनूं आपां कहिंदे आ, उहदे विच थोड़ा जा इह आ कि तकनीकी तौर ते जे इहदी जानकारी हासिल कर दी जाए ना ते फिर वारे नारे हो सकदे।
1: हाँ नाले देखो कि आपां जदों कोई सिखलाई हासिल करते हैं तो हाथी काम भी करते हैं।
0: हाँ
1: तो साढ़े जड़े ना असी पता लगता भी कितने गलती कर रहे हैं, कितने सूँ वधिया करन दी गुंजाइश हैगी है
0: जी,
1: ता कि फिर आपां अगे चल के कोई समस्या ना आऊ।
0: बिल्कुल।
1: तो कोई भी काम शुरू करो ना, खास करके देखो ये इहो जिहा काम आ, ये छोटे जो कमरे तो शुरू हो सकता है जी।
0: बिल्कुल।
1: अपने खुंबा पैदा करनिया, कोई बहुता ऐ नहीं भी सानू रकबा चाहिए, एक सानू वधिया तरीके का कमरा होवे, उहनू ठीक तरीके नाल उहदे विच आपां वख वख तरीके दे ना की कहिंदे हुंदे आ ऐसा ढांचा बना दिए
0: जी,
1: तां कि वधिया तरीके का एक प्लेटफॉर्म बन जाए खुंबा पैदा करन दे लई। क्योंकि देखो हुण जिहड़ा मौसम आ इहदे विच आपां सिर्फ जिहड़ी पराली है जिदां जिहनू कहिंदे आ उह खुंब पैदा कर सकदे हैगे आ
0: जी,
1: ते दूसरी है जी अपने कोले इहनू कहिंदे आ मिल्की, सिर्फ दो ही खुंबा ने जी
0: जी
1: जिहड़ियां बढ़िया वधिया तरीके नाल आपां चार फसलां देखो लै सकते हैं अगस्त तक।
0: अच्छा जी।
1: एक तो समान अपने कोल है जी पराली, ते बीज सेनू स्पैन कहने हैं जी
0: जी,
1: ते बांस ते सेबां जिहड़ा हुंदा आपां गुच्छी जिहदे नाल बन्नणे हैगे।
0: बिल्कुल।
1: ये चार जिहां चाहीदियां जी। फिर वधिया तरीके नाल आपां की करना है रंगा सिंह जी कि पराली दे पुड़ियां नूं साफ पाणी विच ना कोई माहर कहिंदे आ 16 तों लै के 20 घंटे डोब दिओ।
0: अच्छा जी।
1: ते गिले पुड़ियां नूं ना ढलान ते रख के इहदे नाल की होगा जिहड़ा वाधू पाणी आ ना ओह निकल जूगा,
0: निकल जाऊगा। ठीक आ
1: अपने हुंदी आ। फिर कमरे विच जिहड़ा आपां इट्टां ते बांस दा एक ढुकवां प्लेटफॉर्म बना लैणा, ते इस प्लेटफॉर्म ते ना 5 पुड़ियां ते एक तह लाउणी है जी।
0: ठीक।
1: ते इहदे विच आपां 75 ग्राम बीज पा देना जी।
0: अच्छा जी।
1: अच्छा बीज कित्थों लेना? बीज देखो वधिया पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी का जिहड़ा माइक्रोबायोलॉजी विभाग है ना, पहलों राखवा करा लो।
0: ठीक।
1: ये ना भी रंगा सिंह ने किया खुंबा पैदा करनी है सारी तैयारी कर ली ते बीज दे वल कोई ध्यान किया
0: नहीं दिता। बिल्कुल ठीक है।
1: इस करके हर चीज जिदा तह कहने कि व्योतबंदी बड़ी महत्वपूर्ण है कि हर चीज की जानकारी आपां नूं अगाऊं तैयार करके रखनी हैगी है।

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूल की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

परिचय आओ तुहानू जानकारी दे दिए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम से। सात बज के 2 मिनट से तुम सुनोगे प्रोग्राम सोनी सवेर। 8:40 पेश करांगे पंजाबी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम महक पंजाबी। सवेरे 9:02 फिल्म संगीत के प्रोग्राम चाहे तुम सुनोगे फिल्म सनम तेरी कसम दे गीत। NCERT वालों स्पॉन्सर प्रोग्राम सवेरे 9:30 सुनोगे। 10:02 पेश करांगे प्रोग्राम हैलो फरमाइश। 11:05 सुनोगे प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। वास्तविक प्रोग्राम च 12:05 तुसीं अज उडारियां सिलसिले तहत जगदीश कौर हुणां नाल कीती गलबात सुनोगे। नाल ही पेश करांगे अज दा खास सिलसिला साडा विरसा। फौजी विराली प्रोग्राम 1:15 पेश किया जाएगा। बाद दोपहर 2:30 तुसीं सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। रंगली धरती प्रोग्राम चाहे तुसी गिरधारी लाल ते साथियों पासों माता दियां भेटां सरवण करोगे। दूजी सभा च शाम 4:02 पंजाबी फिल्म संगीत दा प्रोग्राम पेश किया जाएगा। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 सरवण करोगे प्रोग्राम गुरबाणी विचार।

गुलमगह गुलमोहर अगर तुम्हारा नाम होता, ये खूबसूरत गीत उसे किशोर कुमार ते लता मंगेशकर हमारी आवाज़ से सुन रहे सी। प्रोग्राम सोनी सवेरे इस वेले आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते सुन रहे हो। गुलमोहर अमलतास से असी गल की सी, ये गर्मी के मौसम के देखने को किन्ने खूबसूरत लगते हैं। गर्मी के मौसम के सारे ही दरख्त कुदरत नूं सोहणे लगते हैं, इस धरती की तपिश नूं ठारन दे लई सोहणे लगते हैं। इसलिए ये हरियावल बनी रहे, इसकी कोशिश पहलां नालों हुण सानूं इस समय दे विच कई गुणा ज़्यादा करन दी लोड़ है। कहिंदे ने कि एक तंदुरुस्त वड्डा दरख्त एक दिन विच इन्नी ठंडक दे सकदा है जिन्नी कई घंटे चलण वाली एसी दे बराबर महसूस हो सकती है। एक वड्डा दरख्त अपने आले दुआले दा तापमान लगभग 2 डिग्री सैल्सियस तो 5 डिग्री सैल्सियस तक घट कर सकता है। इसलिए जिथे बहुत ज़्यादा हरियावल होंदी है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंदे ने, उत्थे कंक्रीट वाले इलाकों नालों काफ़ी ठंडक भी महसूस होंदी है। ये पेड़ अपने पत्तियां राही पानी की भाफ छड़दे ने, ते इस प्रक्रिया राही हवा नूं कुदरती तौर पर ठंडा करन दे लई अपने आप काम करते रहते हैं। तो इस तरह ये साड़ी धरती की तपिश नूं घटाउण दे लई कुदरत दा सब तो खूबसूरत तोहफा ने। हुण देखो असी इस तपिश नूं घटाउण दे लई लगातार एसी दी वरतों करदे हां ते कोशिश करदे हां कि कमरे दे विच साडे घरां दफ्तरां दे विच ठंडक बनी रहे। पर देखो रात भर चलदा एसी हुण याद दिला रहा है कि हुण मैनूं बंद कर दिओ, हुण मेरा आराम करन दा वेला है। क्योंकि दोपहर वेले जदों गर्मी ज़्यादा होएगी उस वेले एसी नूं कमरा ठंडा करन दे लई ज़्यादा मेहनत करनी पएगी, सो इसलिए हुण तां

प्यार में कभी कभी फिल्म च गीत सी जिसनों शान ने गाया सी मुसू मुसू हासी का मतलब होंगे कि हौली हौली शर्माई हुई मुस्कुराहट ये मुस्कुराहट ते चेहरियां ते पूरा दिन इस तरह बनी रहे इसी उम्मीद दे नाल इसी आशा दे नाल अज दा ये प्रोग्राम सोहनी सवेर खत्म करन दी मैनू पूनम नू इजाजत दियो नमस्कार।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले सवेर दे 8 बज रहे ने। हुण तो बस कुछ ही देर बाद तुसी समाचार प्रभात सुनोगे, 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज़ ते 8:30 बजे सुनोगे पंजाबी च खबरां।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का

0: प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहाँ उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के

0: आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगा कर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: कॉलेज थी, साबका प्रिंसिपल संदीप कोच ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी। आईपीएल क्रिकेट विच सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स नू 5 विकटां नाल हरा के प्लेऑफ विच अपनी थां पक्की कर ली है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ते नॉर्वे नू व्यापार ते आर्थिक भाईवाली समझौते तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की पूंजीकारी के टीचे नू हासिल करन ते भारत विच 10 लाख रोजगार पैदा करन लई कोशिशां करनियां चाहीदियां ने। प्रधानमंत्री कलॉसलो विच कराए गए भारत नॉर्वे व्यापार ते खोज शिखर सम्मेलन नू संबोधन कर रहे सन। वली अह शहजादे हाकॉन ते प्रधानमंत्री योनस गहरसथूर भी इस शिखर सम्मेलन च शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार ते आर्थिक भाईवाली समझौते TEPA दे लागू होने के बाद दबल्ले व्यापार ते पूंजीकारी च वाधे दी शलाघा कीती।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरी तब्दीली से जोर दिंदिया देश के विकास, वधदी ऊर्जा मंग, जलवायु वचनबद्धतावां ते नवियाउण योग ऊर्जा, ग्रिड संरचना, हरे हाइड्रोजन ते साफ सुथरी ऊर्जा के पसार का जिक्र किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोवां देशां दे व्यापारक भाईचारियां तो नवी भाईवालियां बनाउण, सहयोग दे उभरदे खेतरां दी पछाण करन ते आर्थिक सहयोग नू मजबूत करन दी अपील कीती। प्रधानमंत्री अज तीजे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन विच सारे 5 नॉर्डिक देशां दे नेतावां नाल मुलाकात करनगे। प्रधानमंत्री अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ा विच अज इटली के 2 दिन दौरे ते रोम पहुंचणगे। यह दौरा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सदे ते हो रहा है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी नाल दवली गलबात करनगे। वह इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला नाल भी मुलाकात करनगे। श्री मोदी भारत इटली विचकार व्यापार ते निवेश नू होर उत्साहित करन लई सनअतकारां नाल भी गलबात करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर नू भारत दे मजबूत आत्मविश्वासी ते समर्थ राष्ट्र बनन दा प्रतीक दस्या है। कल हनोई विच भारतीय भाईचारे नू संबोधन करदिया श्री सिंह ने कहा कि भारत पहला परमाणु हमला ना करन दी नीति प्रति वचनबद्ध है, पर यह परमाणु धमकी अगे नहीं चुकेगा ते दुश्मन दी किसी भी गुस्ताखी दा ढुकवां जवाब देण दी तैयार है। उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अगवाई हेठ भारत ने बेमिसाल तरक्की कीती है, जिस कारण आलमी पद्धर ते देश दा मान लगातार वध रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर खेतर विच तेजी नाल अगे वध रहा है ते सिर्फ तकनीकी तरक्की ही नहीं सगो नवे भारत दी पछाण भी है। श्री सिंह ने विश्व शांति, सांझे विकास ते खुशहाली लई भारत नाल भाईवाली करन दा सदा दिता, नाल ही भारतीय भाईचारे नू राष्ट्र निर्माण विच योगदान देण दी अपील भी कीती। जस्टिस यशवंत वर्मा नाल संबंधित इल्जामा दी जांच कर रही जजा दी जांच कमेटी ने संसद भवन विच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नू आपनी रिपोर्ट सौंपी। ए जज जांच कानून 1968 तहत कानूनी जरूरतां दे मुताबिक पेश कीती गई। ए कमेटी पिछले साल 12 अगस्त नू लोकसभा स्पीकर वल्लों हाईकोर्ट दे साबका जज जस्टिस यशवंत वर्मा खिलाफ इल्जामा दी जांच करन लई बनाई गई सी। ए रिपोर्ट समय सिर संसद दे दोवां सदन विच रखी जाएगी। जजां दी जांच कमेटी दे प्रधान सुप्रीम कोर्ट दे जज जस्टिस अरविंद कुमार, बंबे हाई कोर्ट दे मुख्य जज जस्टिस श्री चंद्रशेखर ते कर्नाटका हाई कोर्ट दे सीनियर वकील BV आचार्य ने जजां दी जांच कमेटी दी रिपोर्ट श्री बिरला नूं पेश की थी। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNewsJalandhar। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता दे आरजी कौर मेडिकल कॉलेज दे हस्पताल दे साबका प्रिंसिपल संदीप घोष दे मुकदमा चलाउण दी मंजूरी दे दित्ती है। ए कारवाई कलकत्ता हाई कोर्ट दे हुक्मां अते CBI दी जांच तो बाद कीती गई है। संदीप घोष दे मेडिकल कॉलेज विच खरीददारी नाल संबंधित मामलिआं विच

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट

सनम तेरी कसम। जी हाँ, अज की यह फिल्म है जिस गीत तुहानू फिल्म संगीत के प्रोग्राम में सुनावांगी। इस फिल्म का टाइटल सोंग तुसी किशोर कुमार हुणां दी आवाज़ में सुने। वैसे इस फिल्म का टाइटल सोंग दो आवाज़ों में है, आशा भोंसले ते किशोर कुमार हुणां दी आवाज़ में। तो इस फिल्म की जेकर गल करें तो 1982 फिल्म रिलीज़ की गई सी, जिसका निर्देशन नरेंद्र बेदी द्वारा किया गया सी। इस फिल्म का निर्माण रीना राय की भैन बरखा राय ने किया सी। मुख्य कलाकार भूमिका विच कमल हसन ते रीना राय सन। प्रोग्राम का अगला गीत किशोर कुमार हुणां दी आवाज़ में, आओ सुनते हैं।

0: शिक्षा जितनी रोचक होगी, सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
0: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
0: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
0: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
0: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहां हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
0: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओ, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
0: जी।
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
0: जी। यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।

0: दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजी जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमृषि, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
0: जी,
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमरेश जी से।
0: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो।
0: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन ले।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
5: गुब्बारे, गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।

0: ötesine diye mücebbengini tabi.
1: Aha, to wo jamun ka ped tha.
2: तो बच्चों सुना आपने, अब जरा याद कीजिए कि जो जो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
3: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: नहीं, बार की नहीं लगी। अरे,
3: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं,
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।

0: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ वही करेंगे। मार, मार, मार, मार, मार, मार, मार, मार, मार।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
3: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
4: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
3: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
5: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
3: आप तो काम करती है ना?
5: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
3: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
2: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
5: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।

0: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
1: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
0: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
1: गौरमा,
0: हाँ,
1: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
0: क्या?
1: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
0: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
2: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
0: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
3: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
2: हाँ, हाँ, हाँ,
4: सब तैयार हैं,
2: नहीं कटने देंगे,
1: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
5: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
0: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बया,
0: मिट्टी पानी और बया,
6: जिंदा रहने के आधार।
7: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
0: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: सुनो, आगे बढ़ो।
3: अरे कहां से
8: तुम इनकी बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू,
3: पेड़ों से छिपक जाएंगे, छिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
0: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
1: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
6: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
8: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
8: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
7: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार

0: पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: तुसी सुन रहे सी एनसीईआरटी वालों स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार ते खोज शिखर सम्मेलन विच भारत एफटा समझौते तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर दे निवेश अते 10 लाख नौकरियां पैदा करन दा सद्दा दिता। प्रधानमंत्री अज तीजे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन विच सारे 5 नॉर्डिक देशां दे नेतावां नाल मुलाकात करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर नूं भारत दा मजबूत आत्म विश्वासी ते समर्थ राष्ट्र बनन दा प्रतीक दस्या। जस्टिस यशवंत वर्मा नाल संबंधित इल्जामां दी जांच कर रही जजां दी जांच कमेटी ने लोक सभा स्पीकर ओम बिरला नूं अपनी रिपोर्ट सौंपी। पछमी बंगाल सरकार ने माली बेनीमिया दे मामले विच आरजीकार मैडिकल कॉलेज दे साबका प्रिंसीपल संदीप घोष ते मुकदमा चलाउण दी इजाजत दित्ती। चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ दे पेट्रोल पंपां ते ईंधन दी राशनिंग दी कथित अस्थाई शुरुआत संबंधी गुमराहकुन ते फर्जी खबरां दा खंडन करदिआं कहा है कि पेट्रोल या डीजल दी विक्री ते कोई पाबंदी या सीमा लाउण संबंधी कोई आदेश जारी नहीं कीता गया। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध दे मद्देनज़र भारतीय चोण कमीशन दे अधिकारियों दी एक टीम ने चंडीगढ़ दा दौरा कीता। पंजाब पुलिस वालों 3 वख-वख कार्रवाइया विच 10 पिस्तौलां 2 किलोग्राम तो वध हैरोइन ते नकली भारतीय करंसी समेत 7 मुलजम गिरफ्तार। गैंगस्टरां ते वार मुहिम दे 118वें दिन पुलिस टीमां वालों 271 व्यक्तियों नूं 3 हथियारां समेत गिरफ्तार किया गया है, जिस नाल कुल गिरफ्तारियां दी गिणती 30,250 हो गई है। लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93-946-93-946 राहीं गुप्त रूप विच लोड़ींदे अपराधियां ते गैंगस्टरां बारे सूह दे सकदे ने। पंजाब

0: राजस्थान से बोल रहे हैं भैन जी।
1: हाँ जी, की हाल चाल ने जी?
0: वधिया भैन जी, अपने सुनाओ।
1: साढ़े हाल चाल भी बहुत वधिया ने जी। अज गाना वधिया जी, केड़ा सुनोगे तुसी?
0: हाँ जी, अखियों को जो रोको से मूवी का गीत है जी, टाइटल सॉन्ग। हाँ जी,
1: ये गीत तो वाकई बहुत
0: अखी।
1: वधिया है।
0: हाँ जी,
1: गौण लगे से तुसी शायद।
0: हाँ जी, गुनगुना
1: ठीक है जी, गुनगुना दियो फिर।
0: रहे थोड़ा जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ जी, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरी, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए,
1: वाकई बहुत सुरीला गीत
0: गंध
1: है, बहुत ही सुरीला गीत है।
0: जी।
1: ते एक गीत सुन के ना हर एक दा मन करदा है कि असीं नाल नाल गुनगुनाइए।
0: हाँ जी, हाँ जी, मेरा फेवरेट सॉन्ग है जी। मैं छोटा जहां सुन लग गया सी रेडियो
1: अच्छा
0: बचपन
1: ठीक है,
0: दे विच। हाँ जी,
1: चलो जी, आप तुहाडे बचपन दियां यादां ताज़ियां कर दिंदे आं इस गीत दे नाल
0: हाँ जी,
1: कॉल करन लई।
0: मतलब शुरू तो बचपन तो। हाँ जी,
1: ठीक है जी,
0: हाँ
1: शुक्रिया
0: जी,
1: जी
0: उदे
1: कॉल
0: कंधों
1: करन दे
0: का
1: लई।
0: रौनक राम होंगे सी तो जी। हाँ, बहुत पुराना। हाँ जी,
1: अच्छा, बहुत पुराने श्रोता तुसी।
0: बेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है जी, शुक्रिया जी कॉल करने लिए। पसंद थी अखियों के झरोखों से इस फिल्म चो हेमलता की आवाज़ विच इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुना जा रहे हैं।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार तथा अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेरल्ड पंच

0: विलियम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग पर आधारित मजबूत संबंध साझा करते हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला न करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। मुंबई में बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 से अधिक अंक की वृद्धि के साथ 75,706 पर, जबकि निफ्टी 107 अंक बढ़कर 23,760 पर था। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स फाजिलगा, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स कसौली, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर, DTH की आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। थोड़ा दोस्त गौरव थोड़े नाल जुड़ गया, थोड़ा अपना रेडियो बेली गौरव 11 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक थोड़े नाल रहेगा और ढेर सारे प्रोग्राम चलाएगा। फिलहाल समा हो गया है साढ़े वट्सएप ते आधारित प्रोग्राम धमक जलंधर पैंती दा। जिन्हां भी श्रोतियां ने 10 बजे तो लैके 10:30 बजे तक मैसेज किए ने, उन्हां दे मैसेज और उन्हां दी फरमाइशां जिहड़ियां ने इस प्रोग्राम दे विच पढ़ियां जाणगियां। ते आओ फिर शुरू करिए प्रोग्राम धमक जलंधर पैंती।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਮਾ ਯਾਚਨਾ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ 94655-36077 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਬੇਲੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 MHz, FM ਬੈਂਡ 100.9 MHz, FM ਬੈਂਡ 100.103.6 MHz ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवम्बर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानूं जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वास्ते विड़े।

0: नमस्कार
1: जी, प्रोग्राम बस दिवड़े लैके मैं हाजिरा अमनप्रीत कौर
0: ते अमन, मैं हाजिरा पूनम। ते की हाल चाल ने, सुनाओ।
1: जी। हाल चाल तुहानू मेरे गले तो पता लग रहे होने।
0: मौसम देखो बदल रहा है ते पहला काफी दिन मौसम दी इस गर्मी तो राहत रही, पर हुण दोबारा लू वापस आ चुकी है। आए भी क्यों ना मौसम है जी लू दा।
1: जी
0: ते
1: बिल्कुल।
0: ये जो मौसम ने ना, ये अपने समय समय मुताबक आउंदे रहन, ता ही जिहड़ियां रुत्तां ने ओ अपने समय मुताबक आ के वातावरण नू रेगुलर कर दिया ने।
1: जी बिल्कुल सही कहा तुसी। और कई बारी साडे मन दी तमन्ना हुंदी है कि बस हमेशा ना थोड़ा ठंडा जिहा मौसम रहे, ठंडा जिहा मौसम रहे। पर असी इस कुदरत दी जिहड़ी एक नियम हैगे आ, है ना, इन्हां नूं असी समझ नहीं पाउंदे। असी अपनियां इच्छावां ने जिहड़ियां अक्सर ही कुदरत दे उत्ते दागण दी कोशिश करदे हां,
0: जी
1: क्योंकि गर्मी दा मौसम ते गूढ़ी गर्मी दा मौसम उन्ना ही जरूरी है जिन्ना गूढ़ी सर्दी दा।
0: देखो जी, जे गर्मी ना होएगी तां अंब किस तरह पकणगे।
1: जी, अंब किस तरह पकणगे, और बाकी जिहड़ियां सलाबां चढ़ जांदियां ने दीवारां दे उत्ते असीं अक्सर वेखदे हां, या फिर होर भी बहुत सारियां अजिहियां चीज़ां ने जिहड़ियां कई वारी साडी अखों परोखियां हुंदियां ने, ओह वी सलाबां ने जिहड़ियां सुकणियां बड़ियां जरूरी ने। ते
0: बल्कि
1: हुण
0: अंब ही नहीं, बल्कि बहुत सारियां जिहड़ियां रुत्तां मुताबक सब्जियां ने, फल
1: जी
0: ने, ओह रुत्तां दे मुताबक ही पकणियां हुंदियां ने। ते दूसरी गल एक होर है कि देखो अज कल किन्ने सोहणे फुल खिड़े होए ने, गुलमोहर दे, अमलतास दे,
1: जी
0: किन्ने
1: जी
0: सोहणे लगदे ने।
1: बिल्कुल, बहुत सोहणे लगदे ने। ते इन्हां फुल्लां नूं देख के तां अपने चेहरे ते एक मुस्कान है जिहड़ी ओह अक्सर आ जांदी है। ते मैनूं लगदा है कि अज तुसी वी मुस्कान है जिहड़ी ओह स्रोतियां दे चेहरे ते जरूर लै आओगे, क्योंकि इन्ने सोहणे फुल्लां दी गल कीती है। पर उस तों पहलां थोड़ी जिही मैं गल करना चाहवांगी, क्योंकि
0: जी
1: मौसम है जिहड़ा ओह एकदम बदल चुक्या। हुण तक थोड़ा जिहा ठंडा सी क्योंकि बारिशां हो रहियां सी,
0: जी
1: भावें कि ओह बेमौसमियां बारिशां सी, पर सानूं जांदियां जांदियां कितें ना कितें बहुत सारी समस्यावां भी दे के जांदियां ने। ते जदों मौसम बदलदा ते उस समय सानूं समस्यावां आउणियां सुभाविक ने। सो सवेरे शाम थोड़ा जा हल्का गर्म कपड़ा जिहड़ा उह पहने रखना चाहिए, बहुते अपने आप नूं फ्री नहीं करना चाहिए। गर्म तो भाव ये नहीं हैगा कि तुसी सर्दी वाला कोई कपड़ा कढ लो, मतलब पूरी बांह दा कपड़ा
0: एक
1: जिहड़ा उह
0: गल
1: पा
0: होर
1: लो।
0: है अमन, जो जरूरी है करनी, कि जदों असीं देखो आराम कर रहे हुंदे हां या अपने घरां दे विच हुंदे हां ना, तां असीं एसी लगा के रखदे
1: जी
0: हां।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ते एसी जदों तुसीं बाहर जाणा है तां कुछ देर पहलां जेकर बंद कर दोगे ना,
1: जी,
0: तां फिर ये गला खराब या जुकाम दी समस्या नहीं आएगी।
1: नहीं आएगी
0: अपने आप नूं तुसीं वातानुकूलित करके ही बाहर निकलो तां
1: जी
0: कि गर्म सर्द ना हो सके।
1: जी इसी तरह पानी जरूर पूरा पीना चाहिए ता कि डिहाइड्रेशन ना होवे। ते इसी तरह घर दे विच ताज़ा ते साफ खाना जिहड़ा उह बना के खाओ। फल जरूर खाने चाहिए ने। ते बहुते बच्चे ने जिहड़े अजकल असी वेखदे हां कि ओह बहुतियां सब्जियां तो, क्योंकि अजकल तोरी, टंडा, कद्दू
0: जी
1: ये आ चुके ने, ते इन्हां तों जी कतराउंदे ने। पर इन्हां दे फायदे बहुत ज़्यादा ने,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि इन्हां दे विच पानी भरपूर हुंदा ते इह अपने शरीर नूं हमेशा तरोताज़ा बनाई रखदे ने। सो
0: जी
1: ये जरूर खाने चाहिए है। तो ठंडियां चीज़ां तो थोड़ा जा परहेज़ करते रहन, क्योंकि मेरे वर्गे जो गर्मी दे विच घूम रहे होंगे तो उस समय उन्होंने होंगे कि सानू ना चिल्ड वाटर मिल जाए पूरा
0: देखो
1: ठंडा।
0: अमन, जिहड़ियां असीं ठंडियां चीज़ां तो परहेज़ दी गल कर रहे हां, ओह ठंडियां चीज़ां ने जो सानूं बाहरी तौर ते ठंडियां
1: बाहरी तौर
0: लगदियां
1: ते
0: ने, जिस तरह
1: ठंडियां लग
0: आइसक्रीम
1: जाने
0: है, ठंडा पानी है,
1: जी
0: या फिर असीं कोल्ड ड्रिंक दी गल कर लैंदे हां। पर
1: जी
0: असल दे विच जो ठंडी चीज़ असीं लैणी है ना, ओह है जी नींबू पानी, गूंद कतीरा, ते
1: जी
0: घर दे बनाए हुए अलग अलग शरबत, ये सानूं
1: जी
0: अंदरूनी तौर ते ठंडक प्रदान करदे ने।
1: जी बिल्कुल। सो ज़रूर अपनी नींद भी पूरी कर लेनी चाहिए है, क्योंकि अजिहे मौसम दे विच जो ज़्यादा शरीर नूं लू लगदी है ना, तां बीमारी ज़्यादा आउण दे खदशा जिहड़ा वध जांदा है। तो नींद इस समें दे विच बड़ी ज़रूरी हो जांदी है, नींद ज़रूरी पूरी करो।
0: नींद तां मैनूं लगदा है कि हर समय दे विच जरूरी है
1: हाँ बिल्कुल
0: ते ये
1: जी
0: सुहाणियां दे लई होर भी ज़्यादा जरूरी हो जांदी है, क्योंकि हर टाइम
1: जी
0: वो किसी ना किसी काम काज दे विच लगियां हुंदियां ने।
1: जी
0: ते उहनां दे लई इक होर चीज़ बहुत जरूरी है कि वो समय समय ते ना पानी पीना अक्सर भुल जांदियां ने।
1: जी बिल्कुल
0: देखो जिथे भी तुसीं काम कर रहे हो, चाहे कमरे दे विच है या फिर रसोई दे विच है, अपने नाल पानी दी बोतल जरूर रखो। ते थोड़ी थोड़ी देर बाद तुसीं सामणे पई होएगी बोतल ना, तां तुहानूं याद आउंदा रहेगा कि मैं पानी पीना है।
1: जी बिल्कुल। ते इसी तरह क्योंकि वैसे सवाणियां ने जिहड़ियां उह अक्सर ही रसोई दे विच रहिंदियां ने, गैस दे कोल रहिंदियां ने, ते उस समय बड़ा जरूरी हो जांदा कि उह ठंडा पानी बिल्कुल ना पीण।
0: जी

0: गीत बड़ा
1: हाँ जी
0: खूबसूरत डॉली गुलेरिया ने गाया,
1: हाँ जी
0: तैनू देंगी पंज पतासे वे मुंशी खत लिख दे।
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: मुंशी कोलो खत लिखांदे सन ते इत्थे मुंशी तुसी बने हुंदे
1: हाँ जी
0: सीगे।
1: बहुत जाने के सयाणिया दी दुआवां मिलियां मैनू, बहुत प्यार मिलिया जाने के जत्ते वाली जो
0: जी
1: बजुर्गों दे विचों।
0: जदों तुहाडे नाल
1: हाँ
0: असीं
1: जी
0: पहलां गल्लबात कर रहे सी ते तुसीं आख्या सी कि जैते वाली विच तुसीं कल्ले कल्ले हो, ऑल इन ऑल हो, यानी कि सारा पोस्ट ऑफिस तुहाडे हवाले है। कि कि कम तुहाडे जिम्मे लगे हुए ने?
1: मेरे जिम्मे जिदा मैं डाक वंडनी, बाकी जिदा सेविंग अकाउंट पैसे जमा कर दी हैं, और RD RPLI जाने के प्रधानमंत्री जो योजना जी हूँ शुरू हुई है वो भी करते हैं, 12 रुपए तो अकाउंट खोलते हैं, वो जाने के 2 लाख का बीमा होंगे है, जो बाई चांस कोई गलबात हो जाती है तो वो 2 लाख रुपया जाने के जो भी
0: मिल
1: आप
0: जाता है
1: नॉमिनेशन लिखाया
0: परिवारिक
1: परिवार।
0: मेंबरां
1: हाँ
0: नूं।
1: जी वो चलो सहूलत, चलो परमात्मा इदा दा टाइम ना ही लियावे पर यह है कि सहूलत मिल जाती है।
0: जगदीश कौर जी,
1: हाँ
0: सारा
1: जी
0: दिन तां फिर रुझे रहिंदे
1: हाँ
0: होवोंगे
1: जी
0: तुसीं, परिवार दे विच कौन कौन है?
1: परिवार दे विच मेरे सासू माँ है और मेरे 2 देर है, दराणियाँ उनके बच्चे हैं, और मेरे 2 बच्चे
0: जी
1: बेटे
0: जी
1: एक बेटी है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: ते सारे तुसीं इकट्ठे रहिंदे हो, सांझे परिवार विच
1: नहीं
0: रहिंदे हो?
1: पहले असीं सांझे रहिंदे सी, हुण असीं बलेने जाने के शिफ्ट कर लिया,
0: अच्छा, अपना घर बना
1: अपना
0: लिया।
1: घर ले लिया। हाँ जी
0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: ते यानी कि तुहाडे 2 बच्चे ने ते एक बेटी है,
1: हाँ जी 2 बेटे हैं,
0: सब दी
1: एक
0: शादी
1: बेटी
0: हो चुकी है?
1: नहीं, बेटी की हुई है
0: ते बेटियां
1: और
0: दी करनी है
1: करनी
0: हले?
1: है। हाँ जी और मेरे दोती भी है।
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, जगदीश कौर जी कहिंदे ने ना, परिवार नूं ते पति नूं
1: हाँ जी
0: खुश करना होवे ना, ते रस्ता मुंह थानी होके पेट विच जांदा
1: हाँ जी हाँ जी
0: है ना।
1: हाँ जी
0: स्वादला खाना हर किसी नूं चंगा लगदा है।
1: हाँ जी हाँ
0: की
1: जी
0: बना लैंदे हो?
1: मैं जाने के तकरीबन जो घर च हर एक चीज़ बना लेनी हाँ,
0: बच्चियां दी पसंद पूरी हो
1: बच्चों की। हाँ
0: जाती?
1: जी जो बच्चों को पसंद है वही बनाईदा है, पहला
0: अच्छा।
1: बच्चों को पूछीदा ठीक नहीं, बच्चे खुश है तो आपा खुश है ठीक नहीं।
0: जदों हस्बैंड नौकरी पेशा होण ते वाइफ घर होवे ते बच्चे संभाले जांदे ने, घर दा काम काज भी आसानी नाल हो जांदा है,
1: हाँ जी
0: पर जदों दोवें नौकरी पेशा होण
1: हाँ जी
0: थोड़ी दिक्कत आ जाती है।
1: नहीं मैनू कोई परेशानी नहीं आई
0: जी
1: क्योंकि मैं सांझे परिवार चो आई, असं एक जगह रहिंदे सीगे, कोई
0: जी
1: इदां दी परेशानी नहीं हुई मैनू, क्योंकि मैं जदों जॉब ते भी जांदी सी मेरी फैमिली जो मेरे सास सहुरा वो मेरे बच्चों का ध्यान रखते सी।
0: क्या बात
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: ये सांझे परिवार का एक
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: वड्डा फायदा
1: बहुत
0: है।
1: वादा बहुत ज़्यादा फायदा है जी। हाँ जी
0: जी, और नौकरी करनी ते नाल बहुत सारी जिम्मेवारियां भी निभाउणियां,
1: हाँ
0: कदे
1: जी
0: कोई दिक्कत आई हुण जदों तुसीं ये कह रहे परिवार च न्यूक्लियर फैमिली च आ गए हो अपने बच्चों के नाल हो, ते कदी कोई दिक्कत आई हुण तुहानू?
1: नहीं वो फिर हुण आदत बन चुकी है ना, हुण बच्चे भी बड़े हो गए आ,
0: अपना आप
1: अपना
0: संभाल
1: अपना
0: लैंदे।
1: संभाल
0: अच्छा,
1: लेंदे आ।
0: तुसीं ते खाना बनाउंदे हो,
1: हाँ जी
0: सारिआं दी पसंद दा ध्यान रखदे हो,
1: हाँ जी
0: कोई तुहाडी वी पसंद दा ध्यान रखदा है?
1: मेरे
0: तुहानू
1: बच्चे
0: वी कोई
1: रखते
0: बणा के दिंदा है?
1: नहीं, मेरे बच्चे बहुत ख्याल करते मेरा।
0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: की बणा के दे दिंदे ने तुहानू?
1: जो मैं कमा के बना के दे देंगे। हाँ
0: अच्छा,
1: जी
0: वाह।
1: ये नहीं कि मना नहीं करेंगे।
0: हुण बहुत सारियां
1: हाँ
0: मामा
1: जी
0: घर बैठियां सोच रहियां होणगियां
1: हाँ
0: कि
1: जी
0: जगदीश कौर जी दे बच्चे वधिया ने,
1: हाँ
0: जदों
1: जी
0: जगदीश कौर जी कुछ कहिंदे ने झट बणा के दे
1: हाँ
0: दिंदे
1: जी
0: ने।
1: हाँ जी
0: वाह जी वाह,
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: अच्छी गल है। इस डिपार्टमेंट विच रहिंदे
1: हाँ जी
0: कदी कोई इहो जी घटना वापर गई होवे जिहड़ी तुहानू हले तक याद होवे? तुसीं बिल्कुल इकल्ले हो, तुसीं कहा कि मैं उत्थे ऑल इन ऑल हाँ, सारे काम मैं आप ही करदी हाँ,
1: हाँ जी
0: कदी कोई इदां दा दिक्कत आई जां
1: नहीं
0: कोई
1: इदा
0: समस्या दा सामना होया?
1: नहीं नहीं इदा दी कोई समस्या नहीं आई,
0: नहीं आई?
1: नहीं आई
0: कदी तुहानू ये भी नहीं लग्गिया कि मेरे नाल कोई जे होर मेरा कोई साथी हुंदा जां कोई होर कुलीग हुंदा ते काम थोड़ा वंडिया जांदा?
1: नहीं। पता की गल है जो साढ़े जिदा पिंड दे लोग आ ना ये बहुत चंगे आ।
0: सहयोगी ने।
1: हाँ जी जिदा कहण दा मतलब कि गर्मियां हुंदियां दोपहर नूं कई बजुर्ग तां इत्थों तक भी कह दिंदे आ कोई नहीं पुत तू शाम नूं साडी डाक दे जाई,
0: अच्छा।
1: जाने के बहुत साथ दिंदे आ भी धोपे आ तुम ही आराम कर, इदा दा मतलब कोई कदी महसूस ही नहीं होया हैगा।
0: जगदीश कौर जी,
1: हाँ
0: जदों
1: जी
0: तुसीं छोटे सी, जदों असीं छोटे सी,
1: हाँ जी
0: उदों डाकिए दी परिभाषा की हुंदी सी? साइकिल दी टल्ली वजनी, घंटी वजनी,
1: हाँ
0: ते
1: जी
0: झट देनी बाहर चल जाना कि बाहरों चिट्ठी आउणी है,
1: हाँ
0: पुत दी
1: जी
0: चिट्ठी आउणी है,
1: हाँ जी
0: माही दी चिट्ठी आउणी है,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: उस चिट्ठी दे इंतजार विच उड़ीकदे हुंदे सी,
1: हाँ जी
0: ते
1: हाँ
0: उहने
1: जी
0: कहना अज तुहाडी चिट्ठी नहीं आई,
1: हाँ जी
0: ते जां फिर अज तुहाडी चिट्ठी आई है। ते ओह हुण रूपरेखा बदल चुकी है,
1: बदल
0: बहुत
1: चुकी
0: सारे ने स्कूटर मोटरसाइकिल लै लेने,
1: हाँ
0: साइकिल दी होंद
1: हाँ
0: खत्म हो गई, ते तुसीं किस तरीके डाक
1: पर
0: वंडदे हो?
1: हुण इदा है ना जिदा मैं हर एक लेडीज़ नू ये भी कहनी हुन्नी कि थोड़े चो थोड़ा बचाओ ठीक है, जे तुसी

0: ज़्यादा नहीं, 100-100 रुपया अपने बच्चे के नाते जमा कराओ, ठीक है। तो वो कहना भी मन लेंगे आ। मैं कह दिनी हूँ कि चलो जे थो तो नहीं आता कोई गल नहीं, मैं रोजाना आना, मैनू कापी दियो, पैसे दियो, अगले दिन मैं थोड़े पैसे जमा करके कापी थोड़े घर पहुँचती
1: क्या
0: करूँगा।
1: बात।
0: इदा जाने के जन तो कहने का मतलब कि ते प्यार बनया है सारे ना हूँ।
1: तुसी पैदल डाक वंडदे हो?
0: जाने के बिच्चे तो साइकिल ते भी जाना जाती घरों, मैं साइकिल ते ही पोस्ट ऑफिस
1: जी
0: तो।
1: जी
0: कहने का मतलब जो कोई डाक खूह आती है उत्थे साइकिल ते, पर जो पिंड च घूमना उस साइकिल एक जगह लगा देनी, तो पैदल जाने के डाक
1: पैदल
0: बनते हैं।
1: जाना,
0: हाँ
1: साइकिल
0: जी
1: ते भी जाना ते पैदल भी जाना।
0: हाँ जी
1: अच्छा, जदों साइकिल ते जाने तुसी भी घंटी बजाने हो?
0: हाँ जी हाँ जी
1: वी चिट्ठी आ गई है जी, तुहाडी चिट्ठी लै
0: हाँ
1: लो।
0: जी हाँ जी। बच्चे बहुत जाने के जिदा रास्ते च डाक बनने चाहिए, बच्चे आ सत श्रीकाल मैडम जी आंटी जी सत श्रीकाल,
1: जी
0: बड़ा वधिया जाने के बुलाते हैं
1: जी
0: तो दिल खुश हुंदा है तो वधिया लगता है जी।
1: बहुत अच्छा लगता
0: हाँ
1: है।
0: जी
1: और तुहाडे बच्चे जॉब करते ने कि जां उन्हां दा कोई अपना काम है?
0: उन्हां दा अपना सलून है जी।
1: अच्छा, अपना काम
0: हाँ
1: करते ने
0: जी रामा
1: जी।
0: मंडी च।
1: जी ते तुसी की सोचते हो जिहड़ियां धीआं धिआणियां ने, होर बच्चियां तुहानूं इस वेले सुन रहियां ने,
0: हाँ जी
1: उहनां नूं डाक विभाग दे विच आउणा चाहीदा है?
0: हाँ जी आना
1: जी
0: चाहिए जी।
1: जी
0: हाँ जी
1: तां कि वो भी अग्गे चल के
0: कि
1: किसी
0: हाँ
1: दा
0: जी
1: सहायता कर
0: सहायता
1: सकन,
0: करन। हाँ
1: डाक
0: जी
1: विभाग दियां
0: हुण
1: जिहड़ियां स्कीमां ने।
0: कई कई सियाने बंदे आ वो चलो थोड़े चो थोड़ा बचाउंदे आ, कह दिंदे पोता साडा जमा कर दिओ, लोड़ पई ते वो बेचारे कढ़वा भी लेंदे आ। हुण पेंशनां दा भी हो गया आ साडे को, जदों पहला पतारे जाना पैंदा सी बैंक च, कई वारी उन्हां नूं साधन मिलदा सी, कई
1: जी
0: वारी नहीं मिलदा सी,
1: जी
0: ते उन्हां दी हुण पेंशन साडे को पोस्ट ऑफिस विच आ जांदी आ।
1: जी
0: आधार कार्ड दे नाल उन्हां ने कर दित्ती लिंक, ठीक है।
1: जिहड़ी बुढ़ापा पेंशन आ।
0: बुढ़ापा पेंशन जिदा उदा उन्हां ने अपने अकाउंट चो पतारे जाण दी बजाए डाकखाने तो ही जाने के जिदा अपनी वो पेमेंट ले लेंदे आ।
1: अच्छा, फिर तुसीं
0: ते
1: तो फिर पैसे दा रख रखाव भी करते हो, पैसे दा हिसाब किताब भी रखते हो
0: हाँ जी हाँ जी सारा रखना पैंदा
1: जी।
0: जी,
1: कदी कदी दिक्कत आवे तां पति देव सहयोग दिंदे ने?
0: हमेशा ही दिंदे आ जी।
1: हमेशा दिंदे
0: हाँ
1: आ
0: जी
1: जी।
0: जिदा साढ़े को अपने RPLI दी स्कीम आई सी ना 2000 दे विच, 2007 विच, तां उदो मेरे हसबैंड ने मेरे नाल रात नूं जाणा लोकां दे घरां दे विच, असीं अगलिया नूं दसणा कि आ स्कीम आई आ तुसीं लो, अगले
1: लोकी
0: ते
1: लैंदे सी,
0: लैंदे
1: फायदा लैंदे
0: सीगे
1: सी।
0: है ना।
1: अच्छा जगदीश
0: ते
1: कौर जी, तुहाडा फायदा असीं इत्थे इह वी लवांगे, तुसीं किन्नियां सारियां स्कीमां गिणा रहे हो,
0: हाँ जी
1: ते साडे विचों बहुत सारे जाणदे ही नहीं होणगे कि डाक महकमा भी, डाक विभाग भी इहो जिहियां स्कीमां चलाउंदा है।
0: हाँ
1: इह
0: जी
1: किहड़ियां किहड़ियां स्कीमां ने जिहड़ियां सानूं फायदा पहुँचाउंदियां ने?
0: साढ़े को जिदा RD अकाउंट है
1: हाँ जी।
0: वो आप 5 साल की कापी बनाते हैं, मान लो आप 100 रुपया भी मंथली कढ़ते हैं तो अपना 6000 रुपया 5 साल च जमा हो जाता है,
1: जो पता भी नहीं लगना,
0: पता
1: चुप
0: भी नहीं।
1: चुपीते
0: हाँ जी
1: जमा हो जाता।
0: ते 7400 रुपया तुसी 5 साल बाद 100 रुपया करवाने आप ले सकते हैं, फायदा ही है।
1: बिल्कुल।
0: हुण जे किसी तो 100 निकलता, किसी तो 500 निकलता, किसी तो 1000 भी, यह कि हर एक जिदा का है जिनी क ज कहने का मतलब अपनी आमदनी आ जिन्ना क आपां उच्चों कढ़ सकते उदा आपां नूं फायदा भी मिलता है।
1: छोटियां बचतां
0: हाँ
1: आपां
0: बचत
1: इत्थे
0: आ।
1: आके कर
0: हाँ
1: सकते
0: जी
1: हैं
0: ते
1: जी।
0: बाकी छोटियां लड़कियां वास्ते जाने की स्कीम है सुकन्या स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, वो आप 250 तो अकाउंट खोलते हैं, वह आप 1000 रुपया मंथली जिदा मान लो 1 महीने की बच्ची है वह आप 250 तो अकाउंट खोल देना, 1000 रुपया भावें करा लो चाहे थोड़े करा लो बहुते करा लो। कहने का मतलब कि जब तक बेटी 14 साल की होती है ना वह आप अकाउंट से 1.5 लाख रुपया करना है,
1: क्या बात है।
0: ठीक है ना। जदों उस कुड़ी ने अपने 21 साल की हो जाना तो 6.5 लाख रुपया उसनों मिलना।
1: अच्छा जगदीश कौर जी, सवाल हूँ इतने पैदा होंगे,
0: हाँ जी
1: तुसी क्या कि 250 रुपये नाल आपां उहदा अकाउंट
0: अकाउंट
1: खोल
0: खोल देना।
1: दिता,
0: हाँ जी
1: ते फिर जिहड़े बाकी दे पैसे उह वी मां बाप ने ही जमा करवाने होंगे आ?
0: जो अकाउंट वो बेटी के नाते बच्चे के नाते खोलना है तो पैसे लेने भी यानी के
1: घरदिया कोलों ही आ, मां बाप
0: माँ बाप तो
1: कोलों
0: ले माँ बाप तो। हाँ जी
1: जी,
0: 14 साल की एज तक माँ पे नहीं कराने हैं।
1: मतलब इतने ब्याज ज्यादा आया थोड़ा जहा।
0: हाँ जी मान लो जिदा 18 साल की बच्ची हो गई है वो कोई कोर्स कर दी है ते वो अपने अद्धे पैसे पिछों
1: ले
0: वो ले
1: सकती है
0: सकती है
1: जी। ते
0: जमा
1: इस तो
0: रकम।
1: अलावा होर केड़ी स्कीम है जी?
0: और अपने आप हैगी है TD अकाउंट आ वो साल से आप साल दी साल यानी कि जिदा ब्याज बदलता रहता है, कहने का मतलब अज जे अपने सेविंग में 3.5% है साल का ब्याज, तो TD जिहड़ा अकाउंट है उस आप 7% मिलेगा,
1: जी
0: उस डबल ब्याज हो जाता है।

0: जी
1: जी सो गीत बहुत खूबसूरत सी ते इहदे नाल मिलदा जुलदा एक गीत ना मेरे जहन दे विच अक्सर आ जांदा हुंदा सीगा कि कुड़िए नी सगी फुल वाली
0: कैंठे
1: कैंठे
0: वाला
1: वाला
0: पूछे
1: पुछे
0: तेरा
1: तेरा
0: नाम
1: नाम। जी सो
0: जी
1: ये गीत भी बड़ा एक समय बड़ा मकबूल होया सी और किते ने पंजाबी सभ्याचार दी वापस

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿਹੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 kHz ਸੇ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी

0: स्थिति है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। आओ हुण असीं तुहानूं साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा दिंदे चलिए।

7:40 ते समा होएगा इंग्लिश टॉक दा, और जिदे विच एडवोकेट हरलीन दुग्गलवालिया टेरर अवर कॉमन एनिमी इहदे बाबत विचार पेश करनगे। जिंदगी हसीन है, ये प्रोग्राम तुसी सुन सकोगे रात 8 बजे। रात 9:30 बजे तुसी खेडां दे रियलिटी प्रोग्राम खेड संसार दा आनंद ले सकोगे।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: हेलो
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: तुस जुड़े हुए हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल। स्टूडियो घड़ी दे मुताबिक दोपहर दे 1:10 हो रहे हैं। तो आओ हुण सुनदे हां प्रदेशिक खबरां।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया दे

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: की के है तुहाडी लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
3: जी बिल्कुल, अपनी जरूरी जानकारी किसी के नाल सांझी ना करो, क्योंकि हो सकता है कि तुहाडी जिहड़ी गुड़ी कमाई है उहदे ते कोई सेंध ला दे। फिलहाल सेंध लाई हुई है रंग बिरंगे गीतां ने तुहाडी खुशी दे विच, और उहदा वादा कर रहे हैं। अगला गीत जिहड़ा मैं सुनाउण जा रहा ना, उस गीत नूं गाया विशाल ददलानी और नाल उहनां दे ने नीति मोहन। ये दोनों दी दिलकश अंदाज दे विच गाई गई। इस खास बीट नूं लिया गया फिल्म गुंडे दे विचों, और इरशाद कामिल ने इहदे बोल लिखे ने, सोहेल सेन ने इहदा गीत संगीत जिहड़ा ओह दित्ता है। ते आओ फिर सुनिए ये गीत।

0: 94 रुपए 8 पैसे फी लीटर बिक रहा है। कोलकाता विच पेट्रोल दी कीमतां 109 रुपए 70 पैसे अते डीजल 96 रुपए 70 पैसे दर्ज कीतियां गईयां, जदों कि चेन्नई विच पेट्रोल दी कीमत 104 रुपए 49 पैसे अते डीजल 96 रुपए 11 पैसे फी लीटर है। ये वादा 15 मई नूं 3 रुपए फी लीटर दे वादे तो कुछ दिन बाद आया है। ये 4 सालों तो बस समय विच ईंधन दी कीमतों विच पहला बदलाव सी। ईरान संघर्ष अते होरमुस पनजोड विच रुकावट दरमियान विश्व पद्धर ते कच्चे तेल दी कीमतों विच तेजी नाल वादे तो बाद ये वादा होया है। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है ARNU-AIR जलंधर, अते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। सुप्रीम कोर्ट ने अज जनतक थावां ते फड़े गए लावारिस कुत्तियां नूं टीकाकरण जां नसबंदी कीते जाण तक ना छड्डण दे आपणे पहलां दे निर्देश नूं वापस लैण तों इनकार कर दित्ता है। जस्टिस विक्रमनाथ की अगवाई वाले बैंच ने अपने नवंबर 2025 के हुक्म विच सोध की मांग करन वालियां पटीशनां नूं खारिज कर दिता अते अधिकारियों नूं अजिहे कुत्तियां नूं आसरा घरां विच रखण दा निर्देश दिता। बच्चियां बजुर्गां ते आउण जाण वालियां ते कुत्तियां दे हमलियां दीयां बेहद चिंताजनक घटनावां दा हवाला दिंदे होए अदालत ने कहा कि यह समस्या हवाई अड्डियां ते रिहायशी कलोनियां समेत संवेदनशील जनतक खेतरां विच फैल गई है। बेंच ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी निर्देशों की पालना करन विच असफल रहिंदे ने उन्हां नूं अदालत दी हद तक अते अनुशासनी कार्रवाई का सामना करना पै सकता है। पंजाब विच राज चोण कमिशन SEC ने 26 मई नूं 8 नगर निगमां समेत 105 नगर निगमां लई होण वालियां नगर निगम आम चोणां 2026 लई दायर कीती गईयां 713 नामजदगियां नूं रद्द कर दित्ता है। SEC मुताबिक नामजदगियां भरन दे आखिरी तरीक 16 मई तक कुल 10,809 उम्मीदवारां ने अपनियां नामजदगियां दाखल कीतियां सन। 18 मई नूं जांच तों बाद नगर निगम नगर कौंसलां ते नगर पंचायत चोणां लई हुण मैदान विच 10,096 उम्मीदवार ने। नामजदगियां वापस लैण दी आखिरी तरीक अज 19 मई है। नतीजे 29 मई नूं ऐलाने जाणगे। कमिशन ने सारे 23 जिलियां विच IAS अते सीनियर PCS अधिकारियों नूं आम निगरान वजों नियुक्त कीता है अते चोणां नूं निरपक्ष सुतंत्र ते शांतिपूर्ण ढंग नाल कराउण लई सारे प्रबंध कीते ने। पंजाब विच दो वख वख सड़क हादसों विच एक पुलिस मुलाजम समेत 5 लोगों की जान चली गई है। अज सवेरे गुरदासपुर विच एक कार हादसे विच 4 नौजवानों की मौत हो गई। एक कार जिस विच ये नौजवान सवार सन पठानकोट तो आ रही सी जदों इसकी एक अणपछाते भारी वाहन नाल टक्कर हो गई। चारा की मौके ते ही मौत हो गई। अज होशियारपुर विच भी एक सड़क हादसे विच एक पुलिस मुलाजम की उस समय मौत हो गई जदों उसकी कार दी सामने आ रहे एक ट्रक नाल टक्कर हो गई। दोवां मामलों विच होर जांच जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग नाल मुलाकात करने लई चीन का दौरा कर रहे ने। क्रैमलिन मुताबिक दोवें नेता आर्थिक सहयोग अते मुख खेतरी ते आलमी मुद्दियां ते चर्चा करनगे। ये दौरा चीन रूस दोस्ती संधि की 25वीं वरेगंढ मौके हो रहा है। कल तो ही पंजाब ते हरियाणा विच जबरदस्त गर्मी कारण लू चल रही है क्योंकि इत्थे वध तो वध तापमान 40 डिग्री सैलसीयस तो वध हो गया है। चंडीगढ़ स्थित भारतीय मौसम विभाग जिसने पहला ही आउंदे दिनां च जबरदस्त गर्मी पैण दा येलो अलर्ट जारी कीता है ने आउण वाले 3 तों 4 दिनां च वध तो वध तापमान विच होर वाधा होण दी पेशीनगोई कीती है। डायरेक्टर IMD सुरेंद्रपाल ने दोपहर दे समय जनता नूं सावधानी वरतन दी सलाह दिंदे होए आकाशवाणी नूं दस्सिया कि नराजां विच तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस या इस तों भी वध होण दी संभावना है।
1: 3 से 4 दिन आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ेंगे और अभी ऑलरेडी टेम्परेचर जो है 42-43 के बीच में और हिसार जो है 45 के आसपास आ गया है, तो इसमें और बढ़ोतरी आप देखेंगे 3 से 4 दिन। खासकर जो पंजाब हरियाणा के वेस्टर्न जिले हैं जिसमें अगर पंजाब में हम देखते हैं तो फिरोजपुर, फजिलका, बठिंडा, मुक्तसर, मानसा, संगरूर और फिर नॉर्थ वेस्टर्न वेल तरन तारण अमृतसर, यहाँ पर टेम्परेचर 45 के आसपास चले जाएंगे। बाकी पंजाब में भी टेम्परेचर बढ़ेंगे लेकिन यहाँ ज़्यादा होंगे। इसी तरह से हरियाणा के जो जिले हैं जिसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे ज्यादा असर होगा, तो लू की स्थिति बनेगी और उसके लिए हमने येलो अलर्ट रखा हुआ है। ये करीब 3 से 4 दिन का समय है, इसमें बारिश की कोई संभावना नहीं है, ड्राई कंडीशन रहेंगे।

आईपीएल क्रिकेट विच अज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स नाल होएगा। ए मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे तो खेडिया जाएगा। आखिर च खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज ओस्लो विच तीजे भारत नॉर्डिक सम्मेलन विच शामिल होणगे। पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां विच करीब 90 पैसे फी लीटर दा वादा कीता गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनतक थावां ते फड़े गए लावारिस कुत्तिआं नूं टीकाकरण जां नसबंदी कीते जाण तक ना छड्डण दे अपने पहलां दे निर्देश नूं वापस लैण तों इनकार कर दित्ता है। इस दे नाल ही साडा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शामी 6:20 बजे होएगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिलियत तजदीद तवानाई, दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और स्वीडन के उनके हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन ने अखबार के एक मुश्तरका मजमून में आलमी गैर यकीनी सूरतहाल के दौर में बैनुल-अक़वामी शराकत दारी पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन आवारा कुत्तों को जिनकी नसबंदी और टीकाकारी कर दी गई हो वापस शेल्टर्स में भेजने के अपने हुक्म को वापस लेने से इनकार कर दिया है। आईएमडी ने अगले 3 दिन के लिए कौमी राजधानी में शदीद गर्मी के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओस्लो में भारत नॉर्डिक तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद काबिलियत तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तिजारत के मैदानों में नॉर्डिक मुल्कों के साथ मुल्की अहम शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है। वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म जोनास गेर स्टोर, डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म मेती फरीदे एरिक्सन, फिनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म पेतेरी ओरपो, आइसलैंड की वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा क्रिस्टन फ़ुरोस्ता दूतिर और स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टर्सन भी होंगे। वजारत ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में नॉर्डिक मुल्कों के साथ खासतौर पर टेक्नोलॉजी और इख्तरा, माहौल के लिए साजगार तब्दीली और काबिल तजदीद तवानाई, पायदारी, समुद्री मईशत, दिफा, खला के शोबों में भारत के ताल्लुकात के अहम पहलुओं की जानकारी देना है। भारत और स्वीडन ने जोर देकर कहा कि ताउन से आलमी गैर यकीनी सूरतहाल में मुश्तरका खुशहाली और एक पायदार मुस्तकबिल की राह वाज़ेह होगी। एक मजमून में जिसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्वीडन के उनके हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन ने तहरीर किया है, ये बात खासतौर पर कही गई है कि बढ़ती हुई जोग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी सूरतहाल, तवानाई की गैर यकीनी फराहमी और इक्तसादी इंतशार के दौर में दुनिया को या तो तंग कौमी नजरियात में ढकेलने या फिर शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने के एक वाज़ेह मुतबादिल का सामना है। इस मजमून में जो आज एक कौमी रोजनामे में शाया हुआ है, दोनों वज़ीरे आज़म ने कहा कि चूंकि अक़वामे मुत्तहिदा अपनी 80वीं सालगिरह मना रही है, लिहाजा बैनुल-अक़वामी ताउन और कसीर मुल्की निज़ाम की अकदार मजीद नुमाया हो गई है। मजमून में कहा गया है कि तरक्की के एक बड़े कायद और आलमी जुनून की एक जिम्मेदाराना आवाज के तौर पर मुस्तकबिल करीब के लिए भारत के दो वाज़े संग मील 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का दर्जा हासिल करना और 2070 तक सेहत के लिए नुकसानदेह गैसों के अखराज को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम रोम पहुंचने वाले हैं। दौरे का मकसद तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजिकल जिद्दत तराजी में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब मोदी इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर वहां का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर रोम में मौजूद भारतीय बिरादरी में काफी जोश खरोश पाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पहले की इन हिदायत को वापस लेने से इनकार कर दिया है कि आवामी जगहों से उठाए गए आवारा कुत्तों को टीका लगाए जाने या उनकी नसबंदी किए जाने के बाद वापस न छोड़ा जाए। जस्टिस विक्रमनाथ की क़यादत में एक बेंच ने उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया।

0: जिनमें नवंबर 2025 के हुक्म में तरमीम करने और हुक्काम को यह हिदायत देने के लिए कहा गया था कि वो इन कुत्तों को शेल्टर्स में महदूद कर दें। अदालत ने बच्चों, मुअम्मर अफराद और मुसाफिरों पर कुत्तों के हमलों के वाकयात को गहरे तौर पर परेशान कुन बताया और कहा कि ये लानत हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों समेत अहम अवामी जगहों तक पहुंच गई है। बेंच ने खबरदार किया है कि जो अफसरान इन हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहेंगे उन्हें तौहीन अदालत और तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वियतनाम के सदर तोलाम से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के भारत के अहद का इरादा किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर दिफा ने कहा कि इश्तराक दोनों मुल्कों के दरमियान इजाफा शुदा जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का अहम सुतून है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम बाहमी एतमाद, मुश्तरक कागदार और दिफा, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम में करीबी इश्तराक के मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल की एक आला सतह की एक मीटिंग छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के मकाम पर शुरू हो गई है। उमर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के वज़राला सेंट्रल जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तकरीबन 90 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। एक हफ्ते से भी कम अरसे में यह दूसरी बार इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये हो गई है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये फी लीटर, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109.70 रुपये और डीजल की कीमत 96.07 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की कीमत 96.11 रुपये फी लीटर हो गई है। भारतीय रेलवे ने चेन्नई के नवाही रेल नेटवर्क को उसे देने के लिए अर्ककोनम चेंगल पट्टू लाइन को दोहरा करने के प्रोजेक्ट के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि 68 किलोमीटर तवील रेल लाइन अहम चेन्नई नवाही सर्कुलर रेल नेटवर्क का हिस्सा है जो चेन्नई के साहिल को ताम्बरम, चेंगल पट्टू और अर्ककोनम से मिलाता है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने कौमी राजधानी में अगले 3 रोज तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। तफसील हमारे नामे निगार से।
1: महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कौमी राजधानी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री के दरमियान रहा जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। कल रिज इलाके में वाके IMD स्टेशन में दर्जा हरारत 44.6 डिग्री सेल्सियस जबकि सफदरजंग स्टेशन में 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड स्टेशन में 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मिजोरम में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी SIR का काम शुरू हो गया है। SIR से मुतल्लिक एक रोजा तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मिजोरम के आला इंतखाबी अफसर डॉक्टर लाल ओजामा ने आम लोगों और इंतखाबी कमीशन की उम्मीदों को पूरा करने की गरज से इज्तमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा जबकि लीग मैच अपने आखिरी मरहले में है। प्लेऑफ के लिए सिर्फ 5 टीमें हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं जबकि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर हो चुकी हैं। पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी फाइनल के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिले तजदीद तवानाई, दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना है। वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गेर स्टोर, डेनमार्क के वजीर आजम मेते फ्रीदे रिक्सन, फिनलैंड के वजीर आजम, आइसलैंड के वजीर आजम और स्वीडन के वजीर आजम भी होंगे। وزیراعظم مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی

0: ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय

0: प्रवासी नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके

0: बाद सोच समझकर विवेक समत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
2: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपये और डीजल की 96.07 रुपये दर्ज की गई, जबकि चेक की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपये और डीजल की 96.07 रुपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की 96.11 रुपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
2: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए

0: अवारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। सोते समा हो गया है साढ़े लोक गीतां ते आधारित प्रोग्राम तुहाडा सारिआं दा अपना मनपसंदीदा रंगली धरती दा। और अज रंगली धरती दे विच असी गिरधारी लाल ते उहनां दे साथियां वालों माता दा कीता गुणगान उन्हां दी भेंटा दे रूप च सुणांगे। बस इस छोटे जिहे अंतराल तों बाद
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दीआं तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੱਪੇ ਹੋਣ, ਮਾਹੀਏ ਹੋਣ, ਸੁਹਾਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਣਗਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਆਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ।

जे दुनिया तो कदे सानू ठोकरां ना पैंदियां, जे दुनिया तो कदे सानू ठोकरां ना पैंदियां, तां कुछ गल्लां साडे लई बुझाड़ तां ही रह जांदियां। जिंदगी दे तजर्बे असीं लैंदे रहिए ते हर दिन कुछ नवां सिखदे रहिए। इस दुआ दे नाल हाजिर है तुहाड़ी होस्ट लवलैन प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां दे नाल। ते शुरुआत दे विच गायक श्रेया घोषाल भी कुछ जिंदगी दे बारे ही गल कर रहे ने, गल कर रहे ने बीते हुए पलां दी ते आने वाली जिंदगी दी। की कह रहे ने गायक, सुनदे हां इस गीत विच।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते बिल्कुल असी गल कर रहे हैं जी मौसम दी ते पानी दी कमी तो बचना बहुत जरूरी हुंदे। पानी सानू ज़्यादा मात्रा दे विच तो पीना चाहिए पर थोड़ा जिहा ख्याल सानू रखना चाहिए कि साफ सुथरा पानी होवे ते थोड़ी जी चाह भी जरूर ले लेनी चाहिए जिहड़ा वार वार प्यास ना लगे। तो पिंड अमीर शाह वाला फिरोजपुर तो चिट्ठी है जी मुख्तियार सिंह वारवल ते होर बहुत सारे दोस्त इन्हां दे नाल ने ते लिखण वाले ने जी मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाणा तो ये चिट्ठी है। विनोदपुरी बीपी रंजो अशोकपुरी सुशीलपुरी बीकेपुरी कैलाशपुरी अनीतापुरी ममतापुरी मेगापुरी पूजापुरी ते गगन कपूर ते गुंजन कपूर लालसा कपूर ते रमा मलिक कुणाल मलिक निधि मलिक हरीशपुरी सतीशपुरी राकेशपुरी विनोदपुरी पालीपुरी डीसीपुरी ते अरुणपुरी। ये चिट्ठी बहुत ही खूबसूरत लगती है सानू क्योंकि ये बहुत सारे नाम होंगे तो बहुत ही स्पैशल इन्होंने टाइपिंग की होंगी है तो एक एक दी जिहड़ी झलक है इस चिट्ठी दे विच सानू मिलती है। बहुत ही वधिया चिट्ठी है तो पिंड ते तेजा मोड़ी हैगा तो अंबाला तो यह चिट्ठी है। बंसी लाल जी लिख रहे हैं तो रणधीर सिंह झगूड़ी पिंड तो यमुनानगर तो इन्होंने ना इस चिट्ठी के शामिल हुए हैं तो अमन वर्मा तो रमन वर्मा दिव्यांश वर्मा डॉक्टर मदन लाल वर्मा तो सारा वर्मा परिवार हैगा ये पै जाते हैं जी बस स्टैंड के बिल्कुल नेड़े है। कहें साडा पिंड हैगा है जी बुरज हनुमानगढ़ तो फाजिलका तो यह चिट्ठी है। फरमाइश इन्होंने सारे की है तो आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है जी जॉर्डन संधु की।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठी मिठियां ते तुसी ट्यून कीता हुए AIR पंजाब ते चिट्ठी है जी मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र तो अभिजीत गवहानकर राही श्रीमती सरिता गवहानकर ते प्रिंस एकांश गवहानकर बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत गवहानकर प्रणीता गवहानकर ते अकार हाइट्स बहादरा नागपुर तो वैशाली शैलेश गवहानकर श्वेता सुमित गवहानकर कुमारी ध्वनि गवहानकर परी नदा घर का नाम ते लाठला टुक टुक गवहानकर मोहम्मदपुर सोतर टाणी रतिया तो जीवन सिंह बुक शंटी बुक सिमरन बुक शल्या राणी ते गुरशिंद्र बुक ते बब्बू

0: तू फुल ते मैं टाणी कोई ना खिल भी जावांगे बस तू अरदासा करया कर आपां मिल भी जावांगे आपां मिल भी जावांगे।
1: प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसीं ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते कहिंदे ने कि मुलाकात लई बहुत ही सही हुंदी है जी चाह जिहड़ी है गर्मियां दे विच भी सर्दियां दे विच भी हमेशा जिहड़ी है उह पीती जांदी है ते सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो चिट्ठी है जी TD मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा ते इन्हां दे नाल हैगे आ जी प्रतीक मल्होत्रा जयवीर सिंह ठाकुर ते डॉक्टर अमनदीप ते अनिल शर्मा कालका तो शुभचंद्र बजाज बिट्टा बजाज ते साहिल ते पिंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका तो मलकीत सिंह कुड़ियाणा मनजीत सिंह बठिंडा दीपेंद्र सिंह चेयरमैन कहिंदे आ ते पोता गुरशबजीत सिंह कुड़ियाणा ते समूह बराड़ परिवार ते इन्हां दे दोस्त भी इस चिट्ठी दे विच इन्हां दे नाल हैगे आ जी कुलवंत गिल मलोट तो सुखदेव सिंह चहल बुरज हनुमानगढ़ तो ते इन्होंने एक बेनती भी की है जी सारे नाम पढ़े जान जी कोशिश की है जी सारे पढ़े गए हैं तो प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर ते सिमरन ते कुलदीप एकम दमन अभिजोत चिट्ठी लिख रहे हैं जी करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुचों कैंचियां बठिंडा तो कनेरा मोहला पटियाला तो मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन बत्ता पलक बत्ता करण बत्ता गीतू बत्ता हार्दिक निहारका ते वंश बत्ता ते पिंड मुलियांवाली जिला फाजिलका तो विनोद काठपाल प्रवीण काठपाल हनी काठपाल दीक्षा काठपाल जन्नत काठपाल ते रौनकी काठपाल फरमाइश इन्हां सारिआं दी है ते आवाज़ है जी शिवजोत दी।

जी प्रोग्राम चल रहा पंजाबी फिल्म संगीत। अगला गीत तुसी सुनोगे सतेंद्र सरताज की आवाज़ दे विच और उन्हां दी ही अपनी फिल्म शायर। जी हाँ, तो फिर सुनिए सतेंद्र सरताज की रूहानी आवाज़ दे विच एक

प्रोग्राम चल रहा जी पंजाबी फिल्म संगीत और तुसी जुड़े हुए हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल। राज दे इस प्रोग्राम दी आखरी पेशकश यानी कि इस प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं। उम्मीद है तुहानू सारयां नू इह गीत बहुत पसंद आएगा क्योंकि इह गीत है भी बहुत वधिया। इस गीत नू लिया गया है शुकराना मूवी चो। देखो जिदा

प्रोग्राम चल रहा जी पंजाबी फिल्म संगीत और तुसी जुड़े हुए हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल। राज दे इस प्रोग्राम दी आखरी पेशकश यानी कि इस प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत तुहानू सुनाण जा रहे हैं। उम्मीद है तुहानू सारयां नू ये गीत बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये गीत है भी बहुत वधिया। इस गीत नू लिया गया है शुकराना मूवी चो। देखो जिदा नाम ही शुकराना होवे तां सोचो वह गीत किन्ना वधिया होएगा। तो फिर सुनिए ये गीत अज दे प्रोग्राम दा आखरी गीत तुहाडे सारयां दे लई और एमी वर्क दी आवाज़ दे विच।

जी अनुसार अकाल पुरख प्रभु दा नाम मानो कामतेन गऊ है, जो उस अकाल पुरख प्रभु दे वस विच है। तांते फिर उस प्रभु दा परापूर्बला नाम जपना चाहिदा है। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना। सरवण करदे हां भाई जगीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखणे औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखै खाए चलिया दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। ए फरमान अकाल पुरख परमेश्वर दे नाम दी वड्याई बयान करता है। दरअसल गुरमुखां दा जीवन ही प्रभु दे नाम नू चेते रखना है। इसे करके प्रभु प्यारिआं नू सच्चे नाम दी भुख लगदी रहिंदी है। साहिब श्री गुरु रामदास

सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल हुई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई जगीर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। जोगियां जतियां तपियां ने अनेका प्रकार नाल खोज करके वेख लई है। सिट्टा यही निकलदा है कि प्रभु दा नाम जपया ही मन नू तरवास मिलदा है, मन नू चैन आउंदा है। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सब ताको बिखम न जाई लैन। सरवण करदे आं भाई अनूप सिंह ते उनां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजह सब ताको, बिखम न जाई लैन। इस शब्द गायन कीता सी भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जज सिंह।
1: तनासरी महला पंजवां, पूजा वर्त तिलक इशनाना, पुन दान बहुदैन, कहू न भीजै संयम स्वामी, बोलह मीठे बैन। प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजै सब ताको, बिखम न जाई लैन रहाओ। जाप ताप भ्रमण बसदा कर, उर्द ताप लै गैन, एह बेदनै पतियानो ठाकुर, जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल कहर जस, तिन पायो जिस किरपैन, साध संग रंग प्रभ पीटे, नानक सुख जन रैन। यह पवित्र पावन शब्द पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज श्री गुरु अर्जन देव जी का उच्चारण किया होया तनासरी राग अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 674 उपर सुभायमान है। इस शब्द दियां केंद्रीय भाव वालियां पंक्तियां इस प्रकार हन। प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजै सब ताको, बिखम न जाई लैन। जदों तो दुनिया बनी है, दुनिया के हरेक मनुख के मन की तमन्ना है कि मैनू रब परमात्मा जी के दर्शन हो जान। रब जी नूं लभण वास्ते आदि काल तो दुनिया के मनुखां ने अनेक तरह दियां पूजा, अनेक तरह के जप तप, अनेक तरह के भेख, अनेक तरह के शरीर नूं कष्ट दिते, परंतु ना तो रब जी के दर्शन

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਕਸੌਲੀ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार $19 अरब के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में

0: द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम के कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आओ हुण जानदे आं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा, जिस विच होणगीआं कम दीआं गल्लां। घरेलू पद्धर ते दाणियां दी संभाल बारे जानकारी देंगे डॉक्टर परमिंदर कौर। खादां दी संतुलित वरतों इस बारे दसणगे प्रकाश चंद गुज्जर। गर्मियां च मुर्गियां दी देखभाल इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर परमिंदर सिंह। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। इस तों इलावा तुहाडे मनोरंजन लई गीत संगीत भी होएगा। शाम 7:40 ते अंग्रेजी वार्ता पेश कीती जाएगी, टेरर आवर कॉमन एनिमी। वार्ताकार होंगे एडवोकेट हरलीन दुग्गल वालिया। रात 8 बजे प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जिंदगी हसीन है। रात 9:15 आएगा प्रोग्राम स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 प्रोग्राम खेड संसार। आज दे इस प्रोग्राम दे विच

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई

0: योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।
4: ਤੱਟ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਤੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ।
5: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। RBI कहंदा है
6: जानकार बनो, सुचेत रहो।
7: हेलो,
8: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
9: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
10: तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुन पेश है आकाशवाणी दा टाइटल सॉन्ग।

0: हाँ जी सरपंच साहब बच्चों नूं देखो अज जानकारियां दे विच ना घरेलू पद्धर ते दाणियां ते होर घरेलू पदार्थां दी संभाल दे बाबत डॉक्टर परमिंदर कौर जानकारियां साझियां करके गए है। आपस नाल साझियां करते हैं
1: जी।
2: प्यारे किसान वीरों अते बीबियों, अज दे इस प्रोग्राम विच तुहाड़ा बहुत बहुत स्वागत जी आया नू। मैं डॉक्टर परमिंदर कौर कृषि विज्ञान केंद्र मोगा तो अज तुहाड़े नाल एक बेहद खास विषय ते अपने विचार सांझे करांगी। सो साडा अज दा विषय है घरेलू पद्धर ते अनाज अते होर खाद पदार्थां दी सांभ संभाल। किसान वीरों इस विच कोई शक नहीं कि हरा इनकलाब आउण नाल साडियां फसलां दे झाड़ दे विच चोखा वाधा होया है अते साडा उत्पादन कई गुणा वध गया है। पर जेकर इस उत्पादन दे मुकाबले असीं देखिए तां अज वी साडियां अन्न दीआं लोड़ां दी पूर्ती नहीं हो पा रही। सो स्वै पड़चोल करनी बणदी है कि साडे वल्लों कित्थे ऊनताई रहि गई है जां कित्थे गलती जां कमी रहि गई है। इस विच कोई शक नहीं कि साडे किसान वीर बहुत ज़्यादा मेहनती ने तो फसल नूं बीजन तो लैके उस दे खाद पानी उस दे कीट प्रबंध तो लैके फसल वढ़न तक बहुत ज़्यादा मेहनत करते ने। पर जदों अनाज संभालण दी वारी आउंदी है

0: हाँ जी बच्चा लो अपने कोले ना डॉक्टर प्रकाश चंद गुज्जर ये आए सी
1: अच्छा
0: खादा दी संतुलित वरतों दे बाबत कुछ जानकारियां सांझियां करके गए है आपां सांझियां करदे हां
2: डॉक्टर प्रकाश चंद गुज्जर जी तुसी केवी की फाजिलका तो साडे कोले आए हो देहाती प्रोग्राम च असीं तुहानूं जीआं कहने आ गल अज जिहड़ा विशा है वह साडा जिहदा कहने आ कि साडी बुनियादी चीज है उहदे नाल जुड़िया होया है बुनियादी है खेती का आधार मिट्टी पानी और अज दोनों नूं लैके बहुत सारिया समस्यावां साडे सामने आ रही ने फसलों के झाड़ भी घट रहे हैं तो उपज की गुणवत्ता दे विच भी फर्क आ रहा है बड़िया समस्यावां इहतों इलावा भी साडे सामने आ रही हैं सो अज आपां मिट्टी की सेहत नूं लैके ही तुहाडे नाल गल्लां बातां करनी है जे अज फसलों लई जिद्दां आपां कहिंदे आ कि फसलों लई भूमि का योग होना बड़ा जरूरी है तां ही आपां उहदे च बीज पावांगे तो सानूं इक चंगी उपज मिलेगी जे मिट्टी की सेहत ही ठीक ना होई मिट्टी दे विच ही समस्या होई तुसीं लख जिन्ने मर्जी खादा पाई चलो जिन्नी मर्जी मेहनत करी चलो जिन्ने मर्जी सुधरे बीज पाई चलो उन्हां दा कोई फायदा नहीं होना सो अज जिहड़ी पंजाब दी जे आपां देखिए कि मिट्टी की सेहत नूं लैके किन्नियां कि चिंतावां ने किस पद्धर ते तुसीं सोचदे हो कि खराब साडी मिट्टी जिहड़ी आ फसल वाली हो चुकी है।
3: पंजाबी देहाती प्रोग्राम पर मैं आपको भी जी आया कहता हूँ और सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से जी आया कहता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की सेहत की, जो आपने जो मुझसे दसा तो उस मिट्टी की सेहत की सबसे बड़ी बात यह आती है कि मिट्टी एक धूल का कण नहीं है, मिट्टी एक जीवित संसाधन है। मिट्टी की बहुत सारी अलग अलग रासायनिक जैविक भौतिक ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं मिट्टी के अंदर, इसीलिए इसको जीवित पदार्थ के रूप में देखा जाता है। तो मैं सबसे पहले किसान भाइयों को ये दसूंगा कि मिट्टी को कभी धूल का कण

0: समझ के उस तरीके से उसका संसाधन के रूप में उपयोग ना करें। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ या अपेक्षाएं करता हूँ, ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाइए। और मिट्टी की जांच, जैसे आपने अभी दसा सर कि मिट्टी की जांच या मिट्टी का जो संतुलित उर्वरक की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से संतुलित उर्वरक उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे आपने बोला कि झाड़ भी घट रहा है, बहुत सारे झोने का झाड़ घट रहा है, कणक का झाड़ घट रहा है, तो ये सब चीज़ें जो देखने को आज दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है, जिसमें मिट्टी भी, भूमि भी दूषित होती जा रही है, पानी भी दूषित होता जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि संतुलित उर्वरक उपयोग से ही मिट्टी को लंबे समय तक बचाया जा सकता है और अधिक से अधिक झाड़ लिया जा सकता है।
1: हाँ बिल्कुल, कितने ना कितने जी है कि उन्होंने जो भी असं दे रहे हैं वो संतुलित मात्रा के विच नहीं मिल रहा है, उस करके मिट्टी के सुभाव के विच या मिट्टी की सेहत के विच परिवर्तन साढ़े सामने आ रहे हैं। हुण आम तौर पर डॉक्टर साहब आप सारे जानते हैं कि असी चाहे साड़ी हाड़ी है चाहे सौनी है, हाड़ी भी खादा असी गड के पाई दे रहे तो सौनी भी खादा जड़िया है, ये तो अलावा पेस्टिसाइड का कोई अंत ही है नहीं। हुण जे आप खादा की गल करिए, क्योंकि खादा के नाल ही उपज की पैदावार दे विच वाधा होना है, जदों उन्होंने संतुलित मात्रा दे विच देना है, एक तो तुसीं जिक्र किया कि मिट्टी की परखता आप करवानी करवानी है
0: जी
1: ना, ये तो बाद किदा जिहड़ा है आप ध्यान रखना है कि उन्होंने संतुलित मात्रा दे विच खाद की मात्रा दी जाए।
0: इसके बाद में मिट्टी की जांच करवाने से ही अपने को पता चलता है कि किस उर्वरक की कमी है और किस उर्वरक की अधिकता है। जिसकी कमी है तो उसकी पूर्ति करेंगे तो मिट्टी का संतुलित बना रहेगा, जिसकी अधिकता है तो उसकी अपने को आवश्यकता नहीं होती है उसमें डालने की, या मिट्टी में पानी की लोड नहीं पैंदी है, ज़्यादा लोड पैंदी है तब उसकी कमी होती है। और कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि यूरिया किसान बहुत अधिक रूप में प्रचलित करता है, जबकि कई बार देखने को ये मिलता है कि अधिक यूरिया देने से उपज घट जाती है, जैसे रोग लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं अधिक यूरिया डालने से। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें। जैसे कई बार यूरिया देने से सिर्फ एक तत्व की पूर्ति होती है, जैसे नाइट्रोजन की, इसके अलावा भी अपनी फसलों को, झोने को, कणक को, सभी फसलों को, जितने भी फसलें हैं इन फसलों को दूसरी तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे पोटेशियम की भी आवश्यकता होती है, फॉस्फोरस की भी आवश्यकता होती है, सल्फर की भी आवश्यकता होती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों का संतुलित तरीके से उपयोग किया जाए तो अधिक से अधिक, जैसे झोने का या कणक का जो उत्पादन जो आपने बोला कि घटता जा रहा है, उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो मैं ये दूसरी बात, इसके साथ में दूसरी बात ये भी जोड़ना चाहूँगा कि आप रासायनिक खादों के साथ में जैविक खाद, रूढ़ी वाली जो खाद होती है, कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, जिसको गडोया खाद बोलते हैं, गडोया की खाद होती है, उसका भी किसान भाई ज़रूर साथ में प्रयोग करें, ताकि मिट्टी की सेहत लंबे समय तक, आने वाली जो अपनी जो पीढ़ियाँ होंगी, जो जीवाक होंगे, उनको आने वाले समय में अपन अधिक से अधिक अपनी अच्छी सेहत वाली मिट्टी देके जाएं, और आगे भी वो इसी तरीके से, जिस तरीके से अपने पुरखों से या जो अपने को जो संपत्ति मिली है मिट्टी, उस मिट्टी की संपत्ति को आगे तक लेके जा सके।
1: अच्छा देखो, ये तो खादा की संतुलित वरतों की तुम जिक्र किया है, हुण जिदा फसली रहिंद खूंद है, अज पता की असं जदों देखते हैं चाहे कणक है चाहे झोना है, तो असी अपनी अगली फसल की बिजाई लिए बाहर वेला करने चुप करके डब्बी चक दें अग ला दें, तो उहदे नाल जैविक मादा जिहड़ा है वह साडी जमीन का वह सड़दा है, तो उहदे नाल नाल जिहड़े साडे मित्र कीड़े आ वह भी कितें ना कितें वह लूए जांदे आ, वह भी खत्म हुंदे आ। कि जिहड़ा ये अग लाउणा है यह भी मिट्टी की सेहत ते प्रभाव ज़्यादा पा रहा है, ये करके भी मिट्टी के जिहड़ा आपां देखदे आं सेहत खराब हो रही है।
0: जैसे ही आग लगाते हैं, किसी पराली को जलाते हैं या कणक की पराली को जलाते हैं, तो उससे जैसे मिट्टी में एक जैविक मादा होती है, जैविक मादा की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जिसकी वजह से कई ऐसे ज़िले हैं पंजाब के जिनमें अधिक फर्टिलाइजर्स का, अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। उसका भी एक रीज़न सामने यही आता है कि अधिक आग लगाने से वो जैविक मादा दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, और जैविक मादा की कमी होने से जो आप उर्वरक डाल रहे हो, जितने भी रासायनिक खादें डाल रहे हो या आप रूढ़ी वाली खाद डाल रहे हो, तो वो जैविक मादा उसको एक घुलनशील रूप में, तत्व के रूप में पौधे को प्रोवाइड करवाती है, तो वो जैविक मादा के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आग लगाने से। तो आग, मेरा ये सभी किसान भाइयों से मैसेज, संदेश जाता है कि सभी किसान भाई आग घट से घट लगाएं, कोशिश करें कि अपने उस पराली को किसी भी ना किसी तरीके से खेत के बीच मिलाएं, उसको मिलाने से कार्बन की जो तत्व होता है सबसे ज़्यादा, कार्बन के मल्च करके कार्बन तत्व की लोड सबसे ज़्यादा मिट्टी को पहन दिया, तो कार्बन तत्व बढ़ाया जा सकता है मल्च करके सबसे ज़्यादा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक

0: ਹਰੀ ਖਾਦ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਝੰਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਣ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1: जैसे सर जी आपने जिक्र किया कि जंतर है, जंतर एक ऐसी फसल है जो दलहनी फसल में आती है, तो उसके एक प्रवृत्ति होती है कि वो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको भी मिट्टी के अंदर खींच के लेके आती है। दूसरी बात कि इससे जैविक मादा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, और जैविक मादा को जो भोजन चाहिए, जो हरी की खादों से जब उसको खेत के बीच में लाया जाता है, तो हरी की जो खाद होती है उससे जैविक मादा को अपना भोजन मिलता है, और भोजन मिलने की वजह से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। और जैसे ही उनकी संख्या में वृद्धि होती है तो अपनी जो अगली जो उसके ऊपर जो क्रॉप लगाई जाती है, अगली जो फसल लगाई जाती है, कणक लगाया जाता है, झोना लगाया जाता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा उपज अधिक मिलती है। सबसे ज्यादा तो हरे की खाद के ऊपर ही हमेशा झोने की बुआई की जाती है।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਸਲ DSR 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ?
1: मिट्टी के साथ छेड़छाड़ कम करने से मिट्टी में कार्बन का लेवल और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे जैसे ज़्यादा कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे मिट्टी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बुआई जुताई करते हैं, सुहागा लगाते हैं, या फिर हैरो लगाते हैं, या कल्टीवेटर लगाते हैं, या फिर तोता हल लगाते हैं, इस प्रकार के जितने भी हैरो जो हैं उनको लगाते हैं, तो ज़्यादा जैसे गर्मी का सीज़न होता है या धूप ज़्यादा पड़ती है, तो धूप के समय अगर जुताई ज़्यादा करने से तो कार्बन का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो कम जुताई करके अगर आप सीधे बिजाई करके सीधे लगाते हो तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कार्बन का, और कार्बन से मिट्टी का जैविक मादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
0: अच्छा ये तो देखो मोटिया मोटिया गल्ला जिदा आप सारा जिक्र किया है, हुण मिट्टी परख का जिदा कहने के बहुत सारे किसान भीर इत्थे गलत ही करते हैं कि मिट्टी परख तो करवाउंदे है, पर किते ना किते मिट्टी परख करवाउण दा समां सारणी ढंग तरीका वह गलत हो जाता है। मिट्टी परख कराने का भी एक ढंग तरीका है, जो हम आप बागों लिए मिट्टी परख करवानी है वह एक अलग ढंग है, फसलों की जी मिट्टी परख है वह एक अलग ढंग है, कि इन चीज़ों भी ध्यान रखना है कि हूँ जब फाजिलका की गल करते हो थोड़ा किनू वाला रकबा आ जाता है ताड़ा इलाका, तो इधर जोड़ा झोना कणक आ जाता है, कि दोनों के जोड़ा परख के भी फर्क पैदा है?
1: दोनों में अलग फर्क होता है। एक की जो डूंगा करते हैं, जैसे मिट्टी का अपने को सैंपल लेना है तो उसको जो डूंगा करते हैं, जो आप झोना कणक इनके लिए तो आप 6 इंच तक डूंगा कर सकते हो, लेकिन जैसे बागों के लिए अगर बात करें तो 60 सेंटीमीटर तक, 45 सेंटीमीटर तक, अलग अलग उनकी रिकमेंडेशन होती है बाग की, उस हिसाब से मिट्टी को डूंगा करना होता है, मिट्टी को डूंगा करके मिट्टी निकाली जाती है। तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह आती है कि किसी किसान भाइयों को ये पता नहीं होता है कि वो मिट्टी की डूंगा कितना करें और कैसे मिट्टी का सैंपल वहाँ से कलेक्ट करें। जैसे उसको सैंपल कलेक्ट करने के बाद में एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं किसान भाई कि जो पॉलीथीन या जो पॉली बैग जिसमें मिट्टी कलेक्ट करके लैब तक भेजते हैं, वो पॉली बैग बहुत गंदा पॉली बैग यूज लेते हैं, पुराना खाद वाले पॉली बैग चक लेते हैं, उसकी वजह से मिट्टी की जो रिपोर्ट आती है वो सही रिपोर्ट नहीं आ पाती है, और उसी की वजह से कई बार अपना जो मिट्टी की रिपोर्ट में जो गड़बड़ी देखने को मिलती है उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है।
0: देखो गल्लां सारियां बड़ियां अहम है डॉक्टर प्रकाश चंद गुजर जी, क्योंकि मिट्टी जे असी मिट्टी दे सुभा नूं ही बदल के रखता, उहदी सेहत नूं खराब करता, तो फिर फसलों का जिहड़ा है क्या सराई करनी साडे लई मुश्किल है, तो जे फिर फसलां नहीं होणगियां तो अगे नसलां नहीं होणगियां, सीधी जी गल है। सो इस करके मिट्टी नूं बचाउणा अपने जीवन नूं सुरक्षित करन दे बराबर है। ये सारी जानकारी तो साडे किसान वीर लाहा लैणगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक।

0: परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि संबंधों को अगले पद्धर ते ले जाने लई उन्होंने हाल ही कुछ महत्वपूर्ण पहलकदमियां कीतियां ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज तीन दिनों के सरकारी दौरे से दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस दौरे का उद्देश दोहां देशों विचकार रक्षा सहयोग और रणनीतिक भाईवाली होर मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि यह दौरा दुआले संबंधों होर मजबूत करन अते आपसी हित के खेत्रों में सहयोग वधाउण का मौका प्रदान करेगा। श्री सिंह वियतनाम का अपना दो दिन दौरा मुकम्मल करन मगरों सियोल पहुंचे ने। श्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम नाल मुलाकात की और दोहां देशों विचकार रक्षा सहयोग को मजबूत करन ते सहमति प्रगटाई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोहां देशों विचकार वधी हुई व्यापक रणनीतिक भाईवाली महत्वपूर्ण है। घट गिणती मामलों बारे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यों के घट गिणती कमिश्नरों घट गिणती भाईचारे के मुद्दों से शिकायतों के हल लई सरगर्म भूमिका निभाउण की लोड़ ते जोर दिता है। मंत्री अज नवी दिल्ली विच राज घट गिणती कमिश्नरां दे एक सम्मेलन नूं संबोधन कर रहे सन। श्री रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के हरेक नागरिक की भलाई अते विकास के दृष्टिकोण नाल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम ते पीएम विकास वर्गियां योजनावां नूं घट गिणती मामलियां बारे मंत्रालय वालों प्रभावशाली ढंग नाल लागू किया जा रहा है। उन्होंने घट गिणतियां की भलाई लई काम करन विच राज्यां दे घट गिणती कमिश्नरां नूं केंद्र सरकार दे समर्थन नूं दोहराया। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक हैंडल है @AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, तो यूट्यूब पर साडा चैनल है @AIR जलंधर। भारतीय रेलवे ने जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेल सैक्शन से 238 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे से सुरक्षा सुधार कार्यों को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजैक्ट का उद्देश जम्मू कश्मीर में इस रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रेल लांघे की मजबूती से भरोसेयोगता वधाउणा है। सरकारी हल्के अनुसार प्रवानित कामों में जम्मू कटरा सैक्शन से ढलान स्थिरीकरण, सुरंगों की मुरम्मत और पुल सुरक्षा उपाय शामिल ने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहलकदमी भूगोलिक तौर पर मुश्किल इलाकों में सुरक्षित और भरोसेमंद रेल संपर्क को यकीनी बनाने लिए सरकार की वचनबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजैक्ट लंबे समय की संचालन सुरक्षा में सुधार करेगा, बुनियादी ढांचे की मजबूती वधाएगा और मौसम और जमीन संबंधित खतरों से महत्वपूर्ण रेल संपत्तियों की रक्षा करेगा। जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेल कोरीडोर को उत्तरी भारत के सब तो महत्वपूर्ण रेल रूटों में एक माना जाता है, जो श्रद्धालुओं और सैलानियों को श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र स्थान नाल जोड़ता है। उत्तराखंड के साबक मुख्यमंत्री ते सीनियर बीजेपी नेता भुवन चंद्र खंडूरी का अज एक निजी हस्पताल में लंबी बीमारी तो बाद देहांत हो गया। वह 91 साल के सन। फौज के साबक मेजर जनरल खंडूरी ने दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वजों सेवा निभाई ते साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सड़क आवाजाई ते शाहरा मंत्री भी रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवन चंद्र खंडूरी के देहांत ते दुख प्रगट किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमिशन NCSC ने आगामी मरदमशुमारी कार्यों लिए तैयार की गई अधिकारित सूची में जातिवादी शब्दों की वरतों के इल्जामों लैके पंजाब के मरदमशुमारी कार्य डायरैक्टोरेट और समाजिक न्याय ते शक्तिकरण ते घट गिणती विभाग के प्रमुख सकत्र नू नोटिस जारी किया है। सरकारी दस्तावेजों में इतराजयोग जाति सूचक शब्दों को शामिल करने संबंधी संबंधित अधिकारियों तो स्पष्टीकरण मांगते हुए कमिशन ने 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए ने। देश के उत्तरी ते केंद्रीय हिस्सों में अत्त की गर्मी पै रही है। उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में 24 मई तक वध तो वध तापमान 2 से 3 डिग्री तक वधन की संभावना है। मौसम विभाग वालों पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ में 25 मई तक लू चलण बारे जारी येलो अलर्ट के चलद दोहां सूबों में वध तो वध तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग वालों अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में होर वाधा होने की पेशीनगोई की गई है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने पंजाब अते हरियाणा विच अज अते कल दे येलो अलर्ट जारी करन दे नाल ही 21 तो 23 मई तक दा ऑरेंज अलर्ट भी जारी करदिआं अपने आप नूं भरी गर्मी तो बचाउण दी भी सलाह दित्ती है। आकाशवाणी नाल गलबात करदिआं मौसम विभाग दे डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने दस्सिआ कि इन्हां दिनां दौरान पारा 45 डिग्री सैल्सियस तो भी पार जा सकदा है।
3: 3 से 4 दिन आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ेंगे और अभी ऑलरेडी टेम्परेचर जो है 42-43 के बीच में और

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। पेश प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। आज भी इस प्रोग्राम दे विच कोशिश करांगे जिंदगी दे

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। तो जिंदगी दे विच तां असीं बहुत कुछ करदे हां ते जिंदगी नूं चलाउण वास्ते ना काम भी असीं करदे हां, तो काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तां फिर जिंदगी किस तरह तुर सकती है। जेकर असीं खाना खाना है या कपड़े पाने ने या घर बनाउणा है या बच्चे पालने ने उहनां नूं पढ़ाउणा लई खाना है, उस दे चीज़ दे लई सानूं पैसा चाहिए है और पैसे कमाउण दे लई सानूं काम करना पैणा है, है ना। ते कहिंदे ने कि तीन तरह के लोग ने ना जड़े वो काम करते ने, असी भी उन्होंने तीन कैटेगरीज दे विच शामिल हो जाने। कहिंदे कि तीन तरह के लोग जड़े काम करते उन्होंने तीन तरीके होंगे ने। एक होंगे मजदूर,

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 8:45 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਅਤੇ 9:15 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि

0: मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है।

0: नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
1: That we will convert the current situation.
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश यानी मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और

0: एल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया,

पेश है अगला नगमा, फिल्म आ गले लग जा तो, आवाज़ किशोर कुमार दी, गीत दे बोल लिखे साहिर लुधियानवी ने, ते तर्ज दिती आर डी बर्मन ने।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय

0: सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the 5th and final leg of his 5-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान

0: को छोड़ते ही नहीं है दिल में आज
1: अच्छा अच्छा
0: खुद।
1: अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। और कौन सा सॉन्ग सुना है आज आपको, गाना कौन सा सुनेंगे?
0: महाराज सर जी जन्मभूमि की आवाज में बोल।
1: बिल्कुल ठीक है जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए, मैं आपकी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। थैंक यू। सो बिल्कुल दोस्तों, जेकर तुम भी चाहते प्रोग्राम का हिस्सा बनना था जी, 081-23-41-71, यानी कि 01-812-342-1711 यह नंबर डायल करके तुम भी इस प्रोग्राम के आ सकते हो। तो इस अलावा तुम सू वट्सअप मैसेज भी भेज सकते हो, साडा वट्सअप नंबर है जी 94-655-36-077, यानी कि 9465-36077। तो कुछ मैसेजेस भी साढ़े तक पहुँच चुके हैं जी, आओ देखते हैं कि दोस्तों के मैसेज आ गए हैं। सो मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी, सब तो पहला मैसेज जो आया है ये मैसेज साढ़े को पहुँचा है जी, शहर का नाम की लिखा है इन्होंने। सो ये मैसेज साढ़े तक आया जी जलालाबाद पछमी तो, भेजा है सुरेश गगनेजा जी ने। इन्हों के नाल जी पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। तो इस नाल एक मैसेज और पहुँचा है जी, ये मैसेज आया है साढ़े को आदर्श नगर मलोट पंजाब तो, भेजा है राज शर्मा जी ने। इन्हों के नाल मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा ते निवान शर्मा। तो अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो, भेजा है टी डी मल्होत्रा जी ने। इन्हों के नाल ने रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह, तो कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं फैरा जगी थर भजन मान साहब की आवाज़ में।

0: पता जलंधर का एक बिहारी है, जलंधर में ये है ना सौगात में कौन करता है, कि मैं बिहारी हूँ तो बिहारी होना गुनाह है क्या?
1: जी बिल्कुल भी नहीं, आपको कॉल कर
0: नहीं,
1: सकते
0: नहीं,
1: हैं आप,
0: मैं
1: आपने कॉल करी है, हमने उठाई है यहाँ पर। चलिए अब हम आपका
0: मेरे पास भी होता
1: संतोष जी,
0: अब
1: थोड़ा एंजॉय करते हैं, ये एंजॉय वाला प्रोग्राम, ये शिकायतों वाला प्रोग्राम नहीं है, ये शिकायतों का प्रोग्राम नहीं है, ये शिकायतों का प्रोग्राम नहीं है संतोष जी, मैं ये कह रहा हूँ ये शिकायतों का प्रोग्राम नहीं है। आप गाना बताएं कौन सा सुनना है, हम आपका मूड लाइट करते हैं।
0: रिकॉर्डिंग मैं इसके मानहानि का एफआईआर में दर्ज करवाता हूँ, ठीक है? मैं आपके ऊपर एफआईआर में इधर केरल से करवाता हूँ, ठीक है? आप कोई भी गाना मत सुनाओ, ठीक है? जाओ, मैं इधर हूँ केरला गवर्नमेंट।

बिल्कुल जी, सो तेरी जट्टी चलती नहीं आकड़ा की तो जगह रामपुर साहब की आवाज़ सभी के प्रोग्राम सुगा चल रहे जी। और मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वे थोड़े नाल बढ़िया होया तो साड़ा वट्सएप नंबर 9465 36 077 यानी कि 9465 36 077 इस उपर भी लगातार दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं। सो अगला मैसेज साढ़े तीन पहुँचा है जी, कनेरा मोहल्ला पटियाला तो भेजा है मुकेश बत्ता जी ने। इन्हों के नाल जी नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता ते एमी विरक साहब की आवाज़ में इन्होंने गीत की फरमाइश की है। तो आओ जी फिर इन्हों की फरमाइश पूरी करते हैं इस प्यारे जे गीत के।

0: सो बिल्कुल दोस्तों, बोलियां जो है कर सी सतविंदर बेटी जी दी आवाज़ से भेजते प्रोग्राम सुगा चला जी। और मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वेल्हे थोड़े नाल पढ़िया होया ते जी, साडा नंबर है 0181 2341 141 यानी कि 0182342171। सो यही नंबर डायल करके दोस्त भी आ गए जी। हेलो,
1: हेलो सर,
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात विच जी। बहुत वधिया जी, कौन गल कर रहे हो? हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। अपना नाम ते पता दस दो, कितों गल कर रहे हो? और सुनाओ बेटे जी, की हाल चाल है? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। सो केड़ा गीत सुनाइए अज? बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़े लिए गीत प्ले करने जा रहा हूँ। कॉल करने के लिए शुक्रिया जी।
1: ओके जी, बाय।
0: थैंक यू जी, थैंक यू।

0: बिल्कुल जी, काढ़ा डोरिया कुंडे नाड़े आई हो गीता जगह रे मन गुरु जी दे वास्ते वेट प्रोग्राम चल रहा है जी। सौगात ते दोस्तों ही आगे जी। हेलो नमस्कार
1: हेलो तनु सर जी, नमस्कार। धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सौगात विच
1: सर जी, तुहाडा बहुत बहुत
0: जी। कौन गल कर
1: मैं
0: रहे हो?
1: देर अच लोनी फाइल का तो बोल रहा हूं, शर्मा सागर।
0: हाँ जी धर्मा सागर जी, की हाल चाल है थोड़े?
1: बहुत बढ़िया सर जी, तुहाडा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कॉल आ गई थोड़ी, देखो 12:30 बजे, होर खुशी होंगी है भी इस वेले तक प्रोग्राम सुन रहे हो तुसी।
1: नहीं कॉल लगी है, मैं लगी सर जी प्रोग्राम का फोन नहीं सुनना।
0: चलो बहुत वधिया गल है जी। तो अज किहड़े गीत दी फरमाइश
1: ली? ग्राहक है आकाशवाणी जलंधर।
0: बहुत शुक्रिया जी। तो किहड़े गीत दी फरमाइश लिखे हो अज?
1: जी सुनाओ कमल जी की रूह।

0: बिल्कुल
1: जितनी
0: ठीक है
1: रुचि
0: जी,
1: रात में कोका लिशका मारे।
0: बिल्कुल ठीक है जी, आप पूरा कोका लिशका देना है उन्हें, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू जी, थैंक यू। सो बिल्कुल दोस्तों, एक नज़र असी व्हाट्सएप मैसेजेस वाले भी मार लेते हैं, अभी किड़े किड़े दोस्तों के मैसेज साढ़े तक पहुँच चुके हैं जी। आओ देखते हैं किड़े किड़े मैसेज आए ने जी। सो मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी हरजिंदर सिंह बराड़ जी का, इन्हों के नाल है जी जुगराज सिंह बराड़, और ये मैसेज आया साढ़े को VPO जी का डिस्ट्रिक्ट बठिंडा तो। तो इस ही एक मैसेज होर पहुँचा है जी, मैसेज सानू भेजा है जी, इन्होंने अपना नाम जी, ये मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो, भेजा है रजाक मुहम्मद साहब ने, इन्होंने नाले जी समीम बेगम, इमरान खान ते इरफान खान। सो इन्होंने आसा सिंह मस्ताना साहब के आवाज़ के गीत की फरमाइश की है, तो बिल्कुल जी इस गीत के बाद असं इन्हों की फरमाइश भी जरूर पूरी करांगे। तो आओ जी फिर लगातार सुनते हैं दो बैक टू बैक गीत।

सुपर को दोस्तों अगला मैसेज साढ़े तीन पहुँचे है जी। कृष्णा पार्क दिल्ली तो भेजा है सुखविंदर सिंह चोड़ा जी ने। इन्हों के नाल जी सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी तो पिंटू दीवाना तो रजिंद्र सिंह अबरोए तो दिलजीत दोसांझ साहब की आवाज़ में इन्होंने गीत की फरमाइश की। फिर आओ जी सुनते हैं पहले जहाँ गीत दिलजीत दोसांझ साहब की आवाज़ में।

बिल्कुल जी, दिल था पता नहीं तेरा कहो चे होना, मैं तो मुखड़ा वेख के मर गया नहीं। सो दोस्तों, बहुत ही दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे हैं और तुसी प्रोग्राम का आनंद ले रहे हो। सो अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी अबोहर तो, राम सहाय शास्त्री जी ने भेजा है। तो आओ जी फिर इन्हों की भी फरमाइश पूरी करते हैं इस प्यारे से गीत के नाल।

सो किछ कर जित मैल ना लागे, हर कीर्तन में एह मन जागे। गुरबाणी विच अनेकां फरमान हन जो जीव नूं चंगे कर्म करन लई प्रेरदे हन। इसे करके गुरबाणी विच हिदायत है, इस बात नूं दृढ़ करवाया जांदा है कि ऐसे कम मनो विसार देने चाहिदे हन जिना करके सानू उस अकाल पुरख परमात्मा दी दरगाह विच शर्मिंदगी उठानी पवे ते चंगे कर्मां नूं जीवन दा आधार बनाउणा चाहिदा है। फरीदा जिन्नी कमी ना है गुण ते कंबड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साई दै दरबार। सरवण करदे आं भाई निर्मल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: ना है गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दया दरबार। आप जी सरवण कर रहे सो भाई निर्मल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास जी मनुख मातर नूं प्रेरणा दिंदे हन कि ऐसे कम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिन्हां नूं कीत्या अंत नूं परमात्मा दी दरगाह विच पछताउणा पवे। सुनदे हां मीना शर्मा होरां पासों वार्ता, ऐसा कम मूले न कीचै जित अंत पछोताई है।
1: तन तन श्री गुरु अमरदास जी गुरु नानक साहिब द्वारा चलाई गुरमत धारा दे तीजे पूरन पुरख होए हन। 17 रागां विच रची आपदी बाणी सेवा सहज सिमरन सदाचारक रहनी ते सच्चे मार्ग दा संदेश दिंदी है। आनंद साहिब आपदी शाहकार बाणी है। ये बाणी एक पूरन दर्शन भी है अते पूरन जीवन जुक्त भी है। विचार अधीन शब्द ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है आनंद साहिब की 11वीं पौड़ी विच दर्ज है अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन अंग 918 ते सुशोभित है। संसारी कार विहारां विच लाभ अते नतीजे नूं ध्यान विच रख के कारज कीते जांदे हन। जिन्हां कम्मां विच नफे दी थां ते नुकसान हो सकदा होवे उन्हां तों वरज्या जांदा है। इस फानी दुनिया दे कम्मां नूं असीं सुचेत होके करदे हाँ जिहड़े मौत मगरों नाल भी नहीं जाने पर परमारथ दे रस्ते लई जो जरूरी हन उन्हां लई अवेसले होए रहिंदे हाँ। जदों तक मनमत पिछे भज्जांगे तदों तक अगलेरे सफर लई कंडे बीजन वाले कम ही होणगे। वरागमई मनोदशा विच जीव प्रभु प्राप्ति दी लोचा करदा है, जीवन दे असली मनोरथ दी भाल करदा है। उसकी अजही अवस्था दा बयान बाबा फरीद जी इउं करदे हन, फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केड़े कम। अकाल पुरख ने जीवां नूं नाम दी कमाई करन लई भेजिया पर माया ते बुराए बंदे ने अद्धी उम्र व्यर्थ दी दौड़ भज विच गवा दित्ती ते बाकी दी अद्धी सौं के। जदों दरगाह विच पेशी होई तां फिर नमोशी दा सामना करना पिया। गुरमत विच जीवन दे असली मनोरथ बारे बड़ा खोल के समझाया गया है। एको नाम हुकम है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। इस आदेश अनुसार

साहिब श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग रामकली विच उचारित आनंद बाणी विचों इस पौड़ी दा गायन। ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले, एह कुटंब तुझे देखदा चले नाही तेरा नाले। इस पौड़ी दा गायन कीता है भाई गुरचरण सिंह रसिया ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले, ए कुटुंब तुझे देखदा चले नाही तेरा नाले। इस पौड़ी का गायन किया सी भाई गुरचरण सिंह रसिया ते उन्होंने रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी सदैव उस अकाल पुरख प्रभु नू ते उस दे सच्चे नाम नू चेते रखण दी मनुख मातर नू हिदायत करदे रहिंदे ने। राग आसा विच उचारित शब्द विच आप जी बयान करदे ने, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचा नाए। सरवण करदे आ भाई समुंद सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। इस शब्द का गायन कीता सी भाई समुंद सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

होने तो सी सरवन का रेसी प्रोग्राम भक्ति संगीत डिटेल थी पंजाबी प्रसारण सेवा दा एच जलंधर के अंदर है ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी पंजाब। इस वेले सवेर दे 4 बज चुके ने ते आओ हुन सी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर ले चलते हैं जित्थों तुसी सरवन करोगे शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण।

पंच पूत एक कार राख ले समाज जग जीतो गुरुद्वार खेला संत सा राथ उन मन लेवरा।

वस्त करै सबै बाल, सदा सुख मन वसै, दुख संसार खोवै, गुर नवनिध दरियौ, जन्म हम कालख धोवै, सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुपाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस

सच नाम कर तार सोधड़ नानक संग रहो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरने लिव रहो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन बखानो जो गुण लख गम तने गुण अंत ना जानो भोत्यों बिधाते निर्मय हो सब संगत कुल उदरण गुर अमरदास कीरत कहे त्राहे

ते वस्त्र कपाटं जे जांस परम कर्मं सफोक ने चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे मन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सहावना।

0: गौ ब्राह्मण को कर लावो गोब्रतर न जाय। धोती टिका ते जप माली दाल मलेचा खाय। अंतर पूजा पढ़े कते बासन जुपुर का पाई। छोड़ी ले पखंडा नाम लिए जाए तरंदा महला पहला।
1: मान सिखाने करे नवाज श्री भगवान तिन गलता। तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दियो ना पिया वह सा। कुड़ी राज पूरा व्यापार।